हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और इसके तुरंत बाद 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म

0: हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन द्वार।

वह अनमोल कुंजी है जो जीवन में शाश्वत परम आनंद और मुक्ति का द्वार खोलती है। प्रेमानंद जीवन की ओर बढ़े। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 196। संगीत सरिता 6:45 पर और पुनः शाम को 6:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का आप भाग 11 सुनेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:00। हम है राही प्यार के 7:30 पर। सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस, इसका भाग 29वां प्रसारित किया जाएगा। नए गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं 8:30 पर और रात को 8:15 पर। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार कार्यक्रम, जो कि केंद्रित रहेगा संगीतकार राम लक्ष्मण पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिए हेलो फरमाइश 10:00। रंग तरंग कार्यक्रम 11:00। बारह बजकर 5 मिनट पर सुनिएगा यादों की महफिल, सुरीला सफर, आप इसका आनंद ले पाएंगे 1:00। दिन में 2:00 एक बार फिर से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस, इसका भाग 29वां प्रसारित होगा।

सदाबहार नग में आप सुन पाएंगे दिन में 2:30 पर। हेलो सहेली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3:00। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी, शीर्षक गोल्ड मेडल, लेखक इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी है ये। संपादन सहयोग काजल भद्रगे का है, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 4:00 आप ये पिटारा गीतों भरी कहानी सुन पाएंगे। छाया गीत का आनंद आप लेंगे शाम 5:00 और 5:30 पर। नए तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। छह बजकर 35 मिनट पर शाम को संध्या रंजन का समय रहता है। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00 आप सुनते हैं। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गुलदस्ता। 8:00 हवा महल में सुनिएगा नाटिका अनोखी बीमारियां। लेखन सुमन माधुरी का है, निर्देशन पुरुषोत्तम दाढ़वेकर का। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 10:00 सुनिएगा छाया गीत आलेख एवं स्वर जाए रात, रात 10:30 पर। और 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये था हमारे आज के कार्यक्रमों का लिखा जोखा चुरुखा के अंतर्गत। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का भाग 196।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं, ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषाद राज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है, उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम रूपरेखा।

अब से ही कुछ ही देर में यानी कि सुबह 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत समाचार। 7 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा। ये सभी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।

8 बजे समय रहेगा समाचार प्रभात का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। ये समाचार भी अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

8:30 से सुनिएगा विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। 9 बजे समय रहेगा कार्यक्रम आज की फनकार का। ये कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। दस बजे सुनिएगा आप सभी का चहेता कार्यक्रम नमस्ते हिसार। 11 बजे सुनेंगे आप 23rd बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF इन्वेस्टिट्यूशन सेरेमनी एंड रुस्तम जी मेमोरियल लिटरेचर। 11 बजे अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके बाद 12 बजे सुनिएगा विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम यादों की महफिल। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित।

प्रसारित। एक बजकर 10 मिनट पर सुनेंगे आप विविध भारती की गीतमाला। अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। दिन में 2 बजे सुनिएगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित। 2:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से ही अनुप्रसारित राष्ट्रीय हिंदी समाचार। दिन में 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली कार्यक्रम। अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। शाम 4 बजे आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। ये कार्यक्रम भी अनुप्रसारित होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। आज शाम 5 बजे सुनिएगा अपना चहेता कार्यक्रम हेलो हिसार। छह बजे सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। 6:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। छह 6:20 पर सुनिएगा भक्ति संगीत कार्यक्रम। 6:30 पर सुनेंगे आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आज सुनेंगे आप इस कार्यक्रम का 1285वां भाग। शाम 7 बजे सुनिएगा खेती किसाना सेती कार्यक्रम। 7:30 पर भारी गांव कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:00 पंजाबी लोकगीत कार्यक्रम सुनेंगे आप। 8:30 पर खुला आकाश कार्यक्रम सुनिएगा। 8:45 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:00 राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित। और 9:15 से सुनिएगा विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित रंगारंग कार्यक्रम।

0: रात्रि 10 बजे सुनेंगे आप संदेश, आपके गीत हमारे कार्यक्रम। 11 बजे सुनिएगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।
1: अर्ज किया है राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
2: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
4: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
3: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
2: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
5: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
3: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
6: Will you be remembered as a great scientist said Thomas Alva Edison।
2: कोई कला में उत्कृष्ट है?
7: भामाशाह।

0: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
0: कार्यक्रम एक शख्सियत,
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।

0: विदर्भ प्रदेशे च उष्णतरंगा तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ तटीय आंध्र प्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडा चक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोज, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभ जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम हरियाणवी लोकरंग के साथ। हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुबह सवेरे आपके लिए गीत संगीत लेके आ करें, दिन की शुरुआत अच्छी हो। सवेरे जब हम काम पे जाएं तो हंसी खुशी के साथ अपना रोटी पानी और साग सब्जी लेके चल लें, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो सारा दिन मन खुश रहे। तो फिर आज लोक रंग कार्यक्रम में आपके लिए लेके आए हैं एक कलाकार गुलाब सिंह खांडेवाल का गीत संगीत। गीत संगीत वो चीज है, देखिए आदमी ने थकावट महसूस नहीं होने देगा, बाग बाग दिल रहेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत में गुलाब सिंह खांडेवाल की या रागनी।

बात गीत संगीत की हंसी खुशी की। देखिए दिन भर हम काम पे लगे रहे, साथ में फोन का भी प्रयोग करते रहे, फोन समय की आवश्यकता है, फोन का सदुपयोग बहुत जरूरी है और अपने बच्चों की यह समझाएं। आजकल हर काम फोन पे शुरू हो गया है, सदुपयोग करते हुए इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा, जिससे आधुनिक तकनीक अपना के हम अच्छा मुनाफा कमा सके हैं। लोकरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश भी गुलाब सिंह खांडेवाल और साथियों की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम आकाशवाणी के एसआर केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पे। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सके हैं। एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर में जाके लिखिए गूगल पे न्यूज ऑन एआईआर, प्रसार भारती की ये ऐप इंस्टॉल करके ओपन में जाएं, हिंदी भाषा की कमांड दे के आप देश के किसी भी आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम साफ सुरीली और स्पष्ट आवाज में सुन सकें। इसके अलावा गूगल पे 102.3 एफएम एसआर लाइव स्ट्रीम में भी ये कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं। आज के हमारे कलाकार हैं गुलाब सिंह खांडेवाल।
1: गड़ी बैठ के

बात गीत संगीत की, काम की शुरुआत की, कोई भी काम दिल लगा के करा जा तो उसने मुनाफा मिल लगा। खेती बाड़ी में नई तकनीक का प्रयोग करते हुए जैविक खेती को अपनाओगे तो अन्न का मिठास तो मन का मिठास, सुख शांति समृद्धि और मौज बनेगी। और ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कलाकार हैं गुलाब सिंह खांडेवाल।

ये सुने भाई आपने गुलाब सिंह खांडेवाल की आवाज में रागनी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं सुझाव दे सके हैं। कार्यक्रम अपना अच्छा लग गया क्यों लग गया न्याऊ कोर कसर रहेगी ताकि हम नए नए कार्यक्रम आपके लिए लेके आवे। इसी के साथ आज का लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। राम राम।

0: नया बेहतर है
1: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
3: दिल चीज क्या है?
0: नया श्रेष्ठ है
1: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
0: नया उत्कृष्ट है
1: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।

0: नया अनूठा है।
1: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
1: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: या आप प्यार में हैं?
1: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
3: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग FM बैंड 102.3 MHz पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 7:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन आपके जीवन में सुख शांति और नई ऊर्जा लेकर आए। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज है 22 मई 2026 दिन शुक्रवार। विक्रम संवत 2083 मास ज्येष्ठ है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। अश्लेषा नक्षत्र है और जो सूर्योदय का समय रहा लगभग सुबह 5:27 पर और सूर्यास्त का समय लगभग 7:09 पर। आज दिन में गर्मी का असर बना रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सुबह और शाम हल्की हवाएं राहत देगी। दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।

0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें।
1: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
3: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
4: अभी न जाओ छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्टकृताम् धर्म संस्थापनाधार्य संभवानि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सत्य और अच्छाई की शक्ति हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने मन में विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर आती है।

श्रोताओं, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। एक पहाड़ी गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। गांव तो स्कूल में था, लेकिन जो आगे की पढ़ाई थी उसके लिए उसको शहर जाना पड़ता था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए सबने कहा इतनी मुश्किलों में पढ़ाई करना संभव नहीं है। लेकिन सीमा के मन में सीखने की इच्छा बहुत थी। वो रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर लाइब्रेरी जाती, पुराने नोट्स लेकर पढ़ाई करती, रात में घर के काम खत्म करने के बाद देर तक पढ़ती रहती। कई बार थकान होती, लोग ताने भी देते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ वर्षों के बाद उसी सीमा ने प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक शिक्षिका बन गई। जब गांव की लड़कियों ने उससे पूछा, दीदी आपने इतनी मुश्किलों में भी हिम्मत कैसे नहीं हारी, सीमा मुस्कुराकर बोली, जब मन में सच्ची चाह हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर आपका इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।

तो दोस्तों सपने देखिए, उन्हें पूरा करने का साहस भी रखिए, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं पर राह होती है।

तो दोस्तों इसी प्रेरणादायक सोच के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। याद रखिए, जीवन की हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने अच्छे कर्मों से दुनिया में खुशियों की रोशनी फैलाते रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: घर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40

0: से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5 लाख की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द है 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नव भारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने थाने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
4: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of seven big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
5: The International Big Cat Alliance IBCA Summit was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it was decided that in order to ensure broad and active participation from all range countries, including African countries, the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation conservation and sustainable development. Samarth Singh for Akashvani News, Delhi.
3: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ लीजिए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सुनवाते हैं आपको कभी खुशी कभी गम इस फिल्म से उषा उत्थप का गाया ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है संदेश सांडिल्य ने।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म फना से शान और कैलाश खैर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा गीत। इसे संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं छतरी वाली फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है अखिल सचदेवा और साथियों ने। गीतकार और संगीतकार अखिल सचदेवा हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: कार्यक्रम चतुर्लोक में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़

पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या जरूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयां, औषधियां, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है और जीव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है। हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जीव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें। पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ, प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं, पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें, जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना जरूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें, जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चिचलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का,
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरी ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में ये अगला गीत। अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को, नमस्कार।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: हाँ।

कल जाने कहाँ हूँ।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कौन के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन

क्या तबीयत है जनाब की? संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से। इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेऊन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर रायश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सजे दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखा।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं और अब समय है आप सभी के चहेते कार्यक्रम नमस्ते हिसार का। नमस्ते हिसार, आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार और आप हैं आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। सुबह की इस ताजगी भरी बेला में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके अपने शहर की धड़कनों से जुड़ी बातें, हिसार के स्थानीय समाचार, ज्ञान बढ़ाने वाले रोचक जी के प्रश्न और प्रेरणा से भर देने वाली महान व्यक्तियों की कहानियां और साथ में आप सभी के मनपसंद गीतों का खूबसूरत सा सफर। तो तैयार हो जाइए अगले एक घंटे तक मुस्कुराने के लिए, कुछ नया सीखने और अपने शहर से और भी करीबी से जुड़ने के लिए। हर दिन एक नए खाली पन्ने की तरह होता है, अब ये हम पर निर्भर है कि हम उसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं या साधारण। आज के कार्यक्रम में आप जानेंगे हमारे हिसार और आसपास की खास खबरों के बारे में, सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका जवाब देने पर सुनवाया जाएगा आपको आपकी पसंद का गीत और एक प्रेरक व्यक्तित्व की प्रेरणादायक कहानी और शानदार प्यारे प्यारे आप सभी के पसंदीदा गीत। तो बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार में, क्योंकि ये सिर्फ एक रेडियो शो नहीं है, ये बल्कि आपके अपनेपन और मुस्कान की एक प्यारी सी मुलाकात है। बात करते हैं स्थानीय समाचारों की, तो सबसे पहले आपको बता दें कि मिर्जापुर में 33 केवी बिजली घर का शुभारंभ, 8 गांवों को मिलेगा इससे लाभ। हिसार जिले के मिर्जापुर गांव में 33 केवी बिजली घर बनाया गया है। करीब 2 एकड़ क्षेत्र

क्षेत्र में बने इस बिजली घर से क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निगम के अधिकारियों ने बुधवार को इसका शुभारंभ किया और उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी गांव की बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई है। तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद चरणबद्ध तरीके से गांव को नई बिजली घर से जोड़ा जाएगा। हिसार में पेट्रोल पहली बार ₹100 के पार, डीजल भी 92.54 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। तेल महंगा होने से फल दूध घी भी महंगा होने की संभावनाएं हैं।

श्रोताओं, आज है 22 मई और आज है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इस दिन को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। और जो आज का दिन है ये है हमारी धरती, हमारी प्रकृति और जीवन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। आज पूरी दुनिया मना रही है ये दिवस, जैव विविधता दिवस, यानी हमारे आसपास मौजूद हर जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, जंगल, फूल, तितलियां और प्रकृति के अनगिनत रंग, यही तो है हमारी जैव विविधता, हमारी धरती को सुंदर, संतुलित और जीवन से भरपूर बनाता दिन। दोस्तों, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हवा शुद्ध नहीं होगी, अगर पक्षी नहीं होंगे तो प्रकृति की मधुर आवाजें खो जाएंगी और अगर नदियां और जंगल नहीं बचेंगे तो जीवन भी अधूरा हो जाएगा। प्रकृति हमें देती है जीवन और हमारा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, और क्योंकि आज के दिन दुनिया भर में पौधारोपण अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण की भी शपथ ली जाती है। छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप भी एक पौधा जरूर लगाइए, पानी बचाइए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कीजिए और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर से जरूर रखें, क्योंकि इतनी जो गर्मी है इसमें पशु पक्षियों के लिए जब दाना पानी आप रखेंगे तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी प्रकृति के लिए तो अच्छा है ही। छोटे छोटे से प्रयास हमारी धरती को, आने वाले कल को सुरक्षित बना सकते हैं, क्योंकि धरती की हरियाली ही तो हमारे जीवन की खुशहाली है। तो दोस्तों, आज के इस खास दिन पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुंदर धरती देंगे।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में, तो आज के जो प्रश्न हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। प्रश्नों का जवाब किस तरह से देना है पहले आप वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको आपके व्हाट्सएप सेक्शन में जाना है, वहां पर हमारे नंबर 9722532272 पर जाकर आपको सबसे पहले अपने सवाल का जवाब टाइप करना है। उसके बाद आप अपना नाम टाइप करेंगे और फिर जगह का नाम जहां से आप हमें संदेश भेज रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी पसंद का गीत हमें लिखकर भेज दीजिएगा। गीत उन्हीं की पसंद का सबसे पहले सुनवाया जाएगा जो सबसे पहले हमें हमारे प्रश्न का सही जवाब देंगे। तो आज का प्रश्न है, जैव विविधता पर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD किस वर्ष लागू हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से, जैव विविधता पर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD किस वर्ष लागू हुई थी। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2001 या फिर ऑप्शन डी 1972। तो जल्दी से हमें इस प्रश्न का सही जवाब लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9722532272 पर।

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
1: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
1: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
3: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
1: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: हमारा आज का पहला प्रश्न था, जैव विविधता पर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD किस वर्ष में लागू हुई थी। हमारे ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 1975। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 1993। और इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, नवीन, मंदी, प्रियंका, सपना, नीतू एवं

वेदांश जांगड़ा। और हमारे और भी श्रोताओं ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ये हमारे श्रोता हैं कामठानी कुतुबपुर चिलाहासी से रामधारी आवाना, अवनी आवाना, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप, बेबी कीरत आवाना।

हमारे ये श्रोता हैं जगदीश राय गर्ग जी, बस स्टैंड मानसा पंजाब से। इन्होंने भी आज की प्रश्न का सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जो आज का प्रश्न का सही जवाब दिया है वो दिया है सज्जन कुमार चांगड़ा जी ने, और इन्होंने सुनना चाहा है आक्रमण फिल्म का गीत। इनकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया पहला क्षेत्र कौन सा था। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया पहला क्षेत्र कौन सा था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी नंदा देवी या ऑप्शन डी मानस। तो इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से लिख भेजिए अपने नाम, जगह के नाम और अपनी पसंद के गीत के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9722532272 पर। तो चलिए, जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचते हैं, तब तक सुनते हैं सज्जन कुमार चांगड़ा जी की पसंद का आक्रमण फिल्म का ये गीत।

एंड रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग।

तो दोस्तों हमारे दूसरे प्रश्न के जवाब वाले संदेश भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन तक आ पहुंचे हैं और हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न था वो था भारत में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया पहला क्षेत्र कौन सा था। हमारे ऑप्शंस थे ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी नंदा देवी या ऑप्शन डी मानस। इस प्रश्न का सही जवाब है नीलगिरी। और इस प्रश्न का सही जवाब हमें सबसे पहले दिया है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजपाला नवीन मंडी, प्रियंका सपना नीतू और विदांश जांगड़ा। और ये सुनना चाहते हैं खामोशी फिल्म का कोई भी गीत, तो इनकी फरमाइश को हम पूरा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं हमारे बाकी के श्रोताओं के नाम भी जिन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ये हमारे आज के इस प्रश्न का दूसरा सही जवाब देने वाले जो श्रोता है ये है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अपनी प्रियांशी रियांशी और जो सनाया गुरदीप बेबी कीरत अवाना। और ये हमारे श्रोता है बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग जी। इन सभी श्रोताओं ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया है सज्जन कुमार चांगड़ा जी ने। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का खूबसूरत सा ये गीत।

0: साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
1: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
3: Will you be remembered as a great scientist, said La Thomas Alva Edison.
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताज़ा खबरें
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
4: मैं अकेली घूमूं अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
5: अभी न जाऊं छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह, एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
6: बदलो बदलो आदत बदलो।
7: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
6: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस खास अवसर पर अब हम बात करेंगे एक ऐसे महान प्रेरक व्यक्तित्व की जिन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों और प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया। ये कहानी है भारत के बर्डमैन की, यानी डॉक्टर सलीम अली की। 12 नवंबर 1896 को मुंबई में जन्मे डॉक्टर सलीम अली बचपन से ही प्रकृति के बेहद करीब थे। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने अपनी छोटी एयरगन से एक छोटी सी चिड़िया को घायल कर दिया। जब वे उस चिड़िया को लेकर उसके बारे में जानकारी लेने गए, तभी पहली बार उनके मन में पक्षियों को जानने और समझने की गहरी रुचि पैदा हुई। दोस्तों, कभी कभी जीवन की छोटी छोटी सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे पूरे भविष्य की दिशा बदल देती हैं। और यही हुआ डॉक्टर सलीम अली जी के साथ। उन्होंने पक्षियों का अध्ययन शुरू किया। उस समय भारत में पक्षियों पर बहुत कम शोध हुआ करते थे, लेकिन सलीम अली ने जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ और दूर दराज के इलाकों में जाकर पक्षियों का अध्ययन शुरू किया। कड़ी धूप, घने जंगल, मुश्किल रास्ते, लेकिन प्रकृति के प्रति उनका प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने भारत के पक्षियों पर कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। ये पुस्तक आज भी पक्षी प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि प्रकृति के सच्चे रक्षक भी थे। उन्होंने कई जंगलों और पक्षी अभयारण्यों को बचाने के लिए आवाज उठाई। उनकी मेहनत की वजह से भारत में पक्षी संरक्षण को नई पहचान भी मिली। उनका मानना था, अगर हम प्रकृति को समझना चाहते हैं तो हमें पक्षियों को समझना होगा। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया है। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई पुरस्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति उनका प्रेम था। डॉक्टर सलीम अली का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इंसान अपने जुनून को अपना लक्ष्य बना ले, तो वो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। आज जब पर्यावरण और जैव विविधता खतरे में है, तब उनका जीवन हमें प्रकृति की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। पेड़, पक्षी और प्रकृति ये सिर्फ धरती की सुंदरता नहीं है, बल्कि जीवन की सांस है। तो आइए हम भी संकल्प लेते हैं कि प्रकृति और पक्षियों की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, अपनी धरती को हरा भरा बनाएंगे।

0: Akashwani at 90.
1: क्या आप परेशान हैं?
2: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
3: क्या आप खुश हैं?
4: आज मैं ऊपर।
1: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
3: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
5: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
1: या आप प्यार में हैं?
6: पहला पहला प्यार है।
3: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
7: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
3: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
1: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
8: दोस्तों, आज जब हम जैव विविधता दिवस मना रहे हैं तो सिर्फ भाषण और संदेश से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ सवाल हमें खुद से भी पूछने चाहिए। क्या मैंने कभी किसी भी वजह से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है? क्या मैं पानी की बचत करता हूं? क्या कभी किसी पक्षी या जानवर के लिए दाना पानी रखा है हमने? क्या मैं प्लास्टिक का उपयोग कम करने की कोशिश करता हूं? क्या आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरी भरी धरती दे पाएंगे हम? क्या हम विकास की दौड़ में प्रकृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? और अगर जंगल खत्म हो गए तो क्या सिर्फ इमारतें हमें जीवन दे पाएंगी? क्या हमने कभी सुबह पक्षियों की आवाज सुनकर प्रकृति का धन्यवाद किया है? दोस्तों, प्रकृति हमसे कुछ भी मांगती नहीं, बस थोड़ा सा संरक्षण और प्यार ही तो चाहती है। धरती को बचाने के लिए बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें ही काफी हैं। जब भी समय मिले तो इन प्रश्नों को खुद से जरूर पूछिएगा और फिर देखिएगा क्या जवाब आता है। इसी के साथ अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये हमारा सफर स्थानीय खबरों, ज्ञानवर्धक बातों, प्रेरणादायक व्यक्तित्व और मधुर गीतों के साथ आपको पसंद आया होगा।

आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि प्रकृति से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही प्रेम आने वाले कल को सुरक्षित बनाएगा। एक पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, पक्षियों और प्रकृति से दोस्ती कीजिए, क्योंकि धरती जितनी हरी भरी रहेगी जिंदगी उतनी ही खुशहाल रहेगी। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही धरती को सुंदर बनाती हैं। आपकी मुस्कान और आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आकाशवाणी हिसार के साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार के साथ, इसी प्यार के साथ मैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया आपसे लेती हूँ इजाजत आज के नमस्ते हिसार कार्यक्रम से। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हिसार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दिन के 11 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे 23वीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ निवेश समारोह और रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान 2026 का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

21वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।

0: नमस्कार। सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएम ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
1: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन आज

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट है: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है. महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि समस्त सीमा प्रहरी परिवार, सीमा सुरक्षा बल

0: विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्त चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफल

0: आयोजित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तटीय रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
1: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
0: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
1: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है,

0: आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगत से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में BSF अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लड लाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, CCTV कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी BSF ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। BSF की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी BSF ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है। BSF ने खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। BSF के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। BSF के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी BSF प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में BSF के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में BSF के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
2: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त BSF परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
1: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर BSF टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है।

0: प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
1: रक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के करकंडों से।
2: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the award from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
3: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi

एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्यारी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया, बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही है शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्म पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका। राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवी तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी मेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह अभी अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एवं नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ अ ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निदेशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उस सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई, और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित

सुरक्षा करकर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते

देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया, पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सब के साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नारकोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उड़ी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा,

मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है और इस सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए 3 हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एक बार एयर स्ट्राइक करकर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार करकर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया है।

भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये

बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम भी रोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी ध्रुवता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले एक साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की

0: जिम्मेदारी कम नहीं होती। तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। इस भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
3: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
4: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द
5: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं

बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कला।

0: जी मेमोरियल स्पीच लेक्चर बाय द होम मिनिस्टर श्री अमित शाह।
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कॉमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। ये आकाशवाणी है।

श्रोता सुन रही हैं फिल्म संगीत और आइए आपको सुनवाते हैं तेरे नाम फिल्म का गीत। गीत को लिखा है समीर ने और गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

और आइए अब सुनते हैं ताल फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

इसी गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा श्रीमती सविता शर्मा गौरव गरिमा शर्मा
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुम्बाई
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल मलखान सिंह पाल सुधांशु पाल और हिमांशु पाल
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ तो विमलेश जी आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को
2: जी अजीत जी वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में
0: जी
2: वो वन है सुंदरवन इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं
0: जी वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है
2: बिल्कुल सही
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना
2: जी जी जी तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है
0: जी सुना तो है
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है
0: अच्छा
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है
0: क्यों
2: ये मैंग्रोव वन है तो आइए श्रोताओं वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं
0: जी विमलेश जी देखिए श्रोताओं रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है
2: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं
2: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है लेकिन इससे पहले कि आगे चले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है

0: है जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण यह वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वारभाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी,
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी,
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, दांतों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मर्दा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

PIETNCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होतीं।

0: सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
1: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
0: लेकिन कब तक?

0: बिल्कुल नहीं।
1: किसी को खुशी नहीं दे सके। मुझे लगता है मेरे जीवन का।
0: अरे नहीं नहीं नहीं चिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा चिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, अच्छा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
0: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
0: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनके पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: जी सुनिए।
0: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
0: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ। मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे इसको भी डालो।
0: हाँ
1: ये देखो
0: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
1: प्यारा लग रहा
2: है। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा तो मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: ये सब तुम्हारी मेहनत का।

0: जाए।
1: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
2: हमारा शहर हो
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
4: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
5: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
3: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
6: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारे जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
3: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उड़ेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
7: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय पटी लैंगडिंगो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
3: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से?

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको, हमें कहीं करनी ना पड़े फिर।

0: कितना सुंदर संदेश था। सची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुगरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के एक बजने को है। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज

0: बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूं मैं राजुल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहां तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराजगी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी है। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। भाई देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता,
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम में FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। दिन

1:05 होने को है। अब से चंद पलों के बाद सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अनुप्रसारित। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है।
1: स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उस सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूँ।
0: श्री शाह ने सुरक्षा से जुड़े उभरते खतरों का उल्लेख किया। इनमें अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का चलन और हथियारों और ड्रग्स की तस्करी शामिल हैं। गृहमंत्री ने ज्यादा एकीकृत और व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और रेल संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद यह आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के आह्वान को व्यवहारिक रूप देते हुए कल चंडीगढ़ से दिल्ली तक का सफर शताब्दी ट्रेन से किया। मुख्यमंत्री इससे पहले भी अपने सरकारी बेड़े में गाड़ियों की संख्या कम कर अनावश्यक ईंधन खर्च को घटाने की पहल कर चुके हैं। अब ट्रेन से यात्रा करने का मकसद जनप्रतिनिधियों को संदेश देना है कि यदि जनप्रतिनिधि समय बदलाव को अपनाएं तो समाज में भी तेजी से सकारात्मक परिवर्तन आता है। जींद में कल जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कृत्रिम अंग वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी ने शिरकत की। समारोह के दौरान कुल 313 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग और अत्याधुनिक उपकरण वितरित किए गए। समारोह के बाद मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने कहा,
2: आज हमने जो 32 लाख रुपए का सामान भरा है, जो हमारे जिम की सेफ्टी है, रामजी लाली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई गांव ज्यादा से ज्यादा गांव तक बात पहुंचनी चाहिए कि रेड क्रॉस संस्था वो लोगों के लिए क्या कर रही है। अभी तो लोग सोचते हैं कि हम रक्तदान में ऐसे, वो पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस जो हर एक के लिए एक समान खड़ी, विकलांगों तक गांव तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात पहुंचाएं कि विकलांगों को कोई भी इशू है तो रेड क्रॉस संस्थाओं के साथ खड़ी है।
0: मीडिया ने बंद पड़े नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर सवाल किया तो मिगलानी ने स्पष्ट किया कि नशा खत्म करने के लिए सरकार और रेडक्रॉस दोनों बेहद गंभीर हैं। जल्द ही सभी नशा मुक्ति केंद्र पूरी सक्रियता से काम करने लगेंगे। सोनीपत जिले में राई स्थित हरियाणा की पहले खेल विश्वविद्यालय के तरणताल में कल देर शाम एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र की पहचान दिल्ली के गौतम नगर निवासी निशांत के रूप में हुई है, जो खेल विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा कर रहा था। बताया जा रहा है कि निशांत का शव तरणताल में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद

0: सुशांत को तुरंत सोनीपत के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात शव को अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। सोनीपत पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें, हर किसी के लिए जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे पलटने के लिए कार्रवाई करने का एक आह्वान है। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए गए आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। FM बैंड 102.3 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। दिन के 1:10 हुए हैं। आइए लौटते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र आगामी रंगारंग प्रसारण के लिए।

भाई जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं, कि हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रही है कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती, एसी कूलर से न दिल बहलता है, रात में न नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारत, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है आप वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर एक किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं ये गर्मी गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ।

पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो जरूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है, ऐसे में गगरी सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज्यादा दिख रहे हैं।

विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन, गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला भारत भूषण। और हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया

0: तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ भुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। ताजा हो रहा है ये संदेश। गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ते चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ही आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखता है कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है। कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की उन्होंने बातें कही है और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो है वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखिए आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौसम

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई जरूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहां नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहां से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। अच्छा इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटी साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। यह कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल

नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है। भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

नहीं, चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब, श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीजों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें जरूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आए। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं, जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो, बाप रे। ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियां याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूं, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो 20-10 के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग एक सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी जरूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

0: है।
1: जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सत तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट न करना, और भी कई चीजें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है।

रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी

फिल्म चार मीनार का ये गाना है बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आशा भोसले की आवाज। विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूं चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है। बचपन में सबसे ठंडक गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी जरूरी होती है और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खौलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली, पंखे और कूलर भी अब हार मान

चुके हैं वो तुम्हें बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजानों कर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिएं, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भरी हुई धरती का जो कलेजा है वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना, वो बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है।

हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने, और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयां आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयां नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे जमीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज किनकी है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है, जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है। और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहाँ बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला नहीं लगता। और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द ढाका डिवीजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं।

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्धराजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए, हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फिलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए, और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन
1: एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना Secretary P.C. Leon.
2: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुलर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुलर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुलर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
0: बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फिलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
3: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष

0: वंदे मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 29वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने

0: भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है, मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री

0: सिमी वैष्णव दो दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु।

0: से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राजन कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे सुरों में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती है। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठने उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं, तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी, बेटा बड़ा है जी, और गुड़िया है वो छोटी है अभी।
0: अच्छा। और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: भी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई भी करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकनी का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे की सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज। ये
0: जी, क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी, मैं जीना है तो हंस के जियो,
0: जी
1: खानेदार खेलूंगा।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: दीदी मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी ने मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सगी सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: दीदी
0: ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती है ना?
1: दीदी
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं। दीदी इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो।

0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: मुझे हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं। मेरे सीने में मेरा दिल धड़े सी, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करते हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ। बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी।
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी।
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी।
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है
0: जी। हाँ बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिसे नापा जाता है
1: जी।
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती है केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी।
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक
0: जी।
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसपे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं। और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है नीचे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स की केक आपका रेडी है। अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप तो बहुत सारे सुनती आई है बचपन से।
1: बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संगीता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आप।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी ये बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने। तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू
0: जी।
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा कर, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, आप कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया

0: रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एम ए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात है।
1: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ना, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती यानी आपके घर में।
1: हाँ, और सभी सिंगर है हमारे देवर वगैरह सब, अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है,
1: सबको इसका। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी
0: जी जी,
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
0: जी।
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सबके लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से,
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा अच्छा लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज जो है वो अपने हस्बैंड को 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना।
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी,
1: साया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें
0: जी।
1: पहले सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, अब हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम

0: कौन सा गाना सुनना है?
1: आज आपने ही पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा।
0: क्या बात,
1: सारा फिल्म से है।
2: अभी कढ़ाई मिलती है,
0: क्या बात है। और आम का पना नहीं बनाती हैं आप?
2: मैम आम का पना नहीं बनाते हम, जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जो डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए अपने परिवार का नाम।
2: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है, मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है, मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से वेद भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1 2 4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।
3: ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी करता।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं।
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम आशिया नाज है।
0: आशिया नाज बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: आशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती है, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं बनक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: अच्छा, जहाँ अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर
0: जी।
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो सहेली और ये तो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं, समाज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन, अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियां मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस

0: क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे, तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है। तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, काया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ, जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पर
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867 0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वे निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: विविध भारती
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियाँ थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्म रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसकने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगे और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो यह है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया।

सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया, तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के की कटोरी को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

क्यों चाहती है? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरील का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वो दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेलकूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इस दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिखकर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल है। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

पते। रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

हकीकतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को। ये आकाशवाणी हिसार है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज है शुक्रवार और लीजिए स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति, फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग पर आधारित आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हिसार। प्रस्तुति रहेगी प्रीति ढिंडोरिया की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो हिसार।
1: हेलो हिसार।
2: हेलो हिसार।
3: हिसार।

0: संगीत और बातों की खूबसूरत महफिल में अब शामिल होने जा रही है आपकी आवाज। जी हाँ श्रोताओं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमें इंतजार है आपके संदेशों का, आपकी फोन कॉल्स का, आपकी फरमाइशों का और दिल से निकली उन बातों का जो हमारी शाम को और भी खास बना दे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ आप सभी के अपने चहेते कार्यक्रम हालो हिसार में, क्योंकि हर आवाज अपने साथ लेकर आती है एक नई कहानी, एक नया एहसास और एक मीठी सी फरमाइश। आप हैं आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन कर रहा है फोन लाइंस के उस पार हमारा इंतजार। हेलो,
1: हेलो हिसार।
0: बिल्कुल, हेलो हिसार कार्यक्रम है, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले मैम आपको प्यारे प्यारे सभी सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम
0: नमस्कार, हम किससे बात कर रहे हैं, क्या जान सकते हैं हम?
1: अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, यूपी उत्तर प्रदेश ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला चाकू वाले रामपुर से।
0: अमरजीत जी कैसे हैं आप और क्या करते हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और मैं अपना हैंड का जरी का काम करता हूँ और इस समय मैं अपने गांव से ही बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया से।
0: अच्छा, तो हमारे सुनने वालों को जरा अपने काम के बारे में बताइए अच्छे से, क्योंकि आजकल जो है फैशन जो है दिन पर दिन बदलता जाता है, लेकिन जो हाथ का काम है उसके बारे में बताइए कि कितनी मेहनत लगती है, किस तरह से आप तैयार करते हैं शुरुआत से लेके?
1: जो हमारे काम में रहता है जरी का, जो इस पे रहता है ज्यादातर सूटों पर रहता है मैडम, और लहंगे पर रहता है, साड़ियों पर रहता है, और इसमें जो मटेरियल रहता है वो रहता है जैसे रेशम हो गया और दबका हो गया, कटदाना हो गया, मोती हो गया, जरकन हो गई।
0: अच्छा,
1: और तमाम प्रकार के मटेरियल होते हैं मैम, और जो हम सुई द्वारा फूल को तैयार करते हैं सिलते हैं, और उसमें एक फूल में 6-7 प्रकार का जब मटेरियल लगाते हैं तो काफी फूल की रंगत बढ़ जाती है, पसंद आता है।
0: अच्छा, ये तो काम सबको ही बहुत पसंद आता है। बताइए कितने दिन लग जाते हैं आपको एक ड्रेस तैयार करने में लगभग?
1: जैसे एक कारीगर अगर एक सूट को तैयार करे तो कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि 1 दिन लग जाते हैं उसके गले बनाने को और 1 दिन लग जाते हैं आस्तीन बनाने को, और कुछ बीच में काम देना पड़ता है जो अच्छा। हमारा दामन वगैरह रहता है ना, तो दामन में काम देना पड़ता है, तो 2 से 2.5 दिन लग जाते हैं लमसम, 2 दिन मान के।
0: बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत जी, बहुत मेहनत का काम है आपका और आंखों का काम है, अपनी आंखों को दुरुस्त रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, और यही कामना करते हैं आपका काम ऐसे ही अच्छे से चलता रहे। बताइए आज रेडियो पर कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जब काफी दिनों के बाद हेलो हिसार प्रोग्राम में मेरी फोन कॉल शामिल हो रही है
0: जी,
1: और आपसे बातचीत भी इस प्रोग्राम में जा रही है, तो मूवी का नाम रहेगा इसमें गीत के बोल रहेंगे, यूं अखियां मिला के अखियों से परदेसी मुझे तो लूट गया, ये सुन रहा देना मैम, और मैं उनसे सुनने वालों का नाम लेना चाहूंगा
0: लीजिए।
1: जैसे कि मेरे बड़े भाई साहब ऋषि पाल है, बड़े भाई साहब अमरपाल है, छोटा भाई शुक्लाल है, छोटा भाई सीएम है, बक्ससेना दातागंज से विमल थारू ठाकुर जी है, और बरेली से शरण अंसारी जी हैं, और फरमान
0: है।
1: भाई हैं, प्यारे प्यारे सुनने वाले हैं, साथ में आप हैं अमरजीत में
0: जी। अमरजीत जी आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अंदाज फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो प्रीति जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: मैं गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल।
0: जी। राजू जी, कैसे हैं आप
1: बिल्कुल अच्छे हैं जी।
0: जी? और बताइए, हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: कार्यक्रम तो ठीक है जी। लोकरंग प्रोग्राम हमेशा ही अच्छा होता है जी, रोजाना सुनता हूँ मैं
0: जी,
1: जरूर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। राजू जी, आज के कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज ये शारदा सिन्हा जो हमारे बीच नहीं रही जी, उनका मैंने प्यार किया फिल्म, और पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया।
0: चलिए, आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत हम सुनवा रहे हैं आपको। सुनिए अपनी पसंद का गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी। अरे
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: गांधी चौक आजाद गली पप्पू लाखवाला बोलो, नवलगढ़ वाला।
0: जी पप्पू लाखवाला जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाओ, कैसे हो? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है जी।
0: जी बिल्कुल, गर्मी तो अपने प्रचंड रूप पे है और अभी जून का महीना बाकी है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जी आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आप सुनवा जी, दो अंतों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो राम दुल्हन में बया रे।
0: आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। आपने
1: और
0: कार्यक्रम
1: दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ जी।
0: जी लीजिए।
1: हाँ, खारिया से मनीष, राजू के वाला बिक्की नाई।
0: चलिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हाँ, क्या बात, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: जी, बहुत एकदम, क्या कहूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति डिंडुरिया से मेरा बातचीत हो रहा
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल, आपकी प्रीति ढिंडोरिया से बातचीत हो रही है।
1: जी, मेरा मन में एक सिक्स सेंस ने कह दिया आज प्रीति डिंडुरिया आएंगे।
0: अच्छा जी,
1: और

0: ही माहौल हो गया है ना
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज हमारे श्रोताओं को अपना नाम तो बताइए।
0: जी। आकाशवाणी हिसार के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनु कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना। तो
1: जी बिल्कुल
0: पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए,
1: बिल्कुल
0: बस जिंदगी ऐसे जियो के रब को पसंद आए, है ना।
1: बिल्कुल, बहुत खूब अनूप कुमार जी, और इतनी अच्छी आप
0: जी
1: जब बातें बताते हैं हमारे सुनने वालों तक जरूर एक कोई ना कोई
0: क्या
1: संदेश जरूर जाता
0: बात
1: है।
0: क्या बात।
1: बी
0: पिछले हफ्ता मैं ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरा भाग्य में तो ये प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि फोन लगाने में बहुत ट्राई किया, नहीं लगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आज
1: चलिए,
0: मेरा
1: आज लो लग गया, देर आए दुरुस्त आए, आज आपकी बात हो रही है, बताइए अपनी
0: जी
1: पसंद का।
0: जी तो चलिए आज ये गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं, और गाने के बोले थे सा

0: मेरा दिल ऐसे करके गाने हैं
1: और
0: कुछ
1: जी
0: दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
1: जी लीजिए।
0: पहले है हमारे पसंद तिलक सूर्यवंशी जी है, और है विजय सिंह लखेरा जी है, अमर सिंह साहू जी है, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है अनवर बिहारी भाई के लिए, और श्रीकांत जोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, और हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त मेरा सिस्टर है जिसका नाम है प्रीति झिंडुरिया जी के लिए, है
1: बहुत
0: ना।
1: बहुत शुक्रिया अनूप कुमार जी, और इसी तरह से अपना प्यार अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। कार्यक्रम में आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, गांधी
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: चौक से बोल रहा था मैडम। राजेश जैन।
0: जी। राजेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया मैडम। काम
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: तो मैडम अभी थोड़ा मंदा ही है, गर्मी
0: गर्मी की वजह
1: ज्यादा
0: से?
1: है ना। गर्मी
0: जी बिल्कुल
1: में गांव वाले आते नहीं इतने ज्यादा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए
1: एक गाना था
0: आप।
1: मैडम जी,
0: हाँ, गीत ही
1: पुरानी
0: जानना चाहते हैं हम। कौन सा
1: पुरानी
0: गीत?
1: हेरा फेरी फिल्म का एक गाना था, विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन होता है इसमें।
0: जी
1: मतलब दरबार में ऊपर वालों के देर नहीं अंधेरी है, ये तो वक्त की हेरा फेरी।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम में। फोन करने
1: और
0: के लिए
1: ये
0: बहुत बहुत
1: पिछले
0: धन्यवाद।
1: वाली हेरा फेरी है मैडम, पुरानी वाली।
0: जी
1: बहुत बढ़िया गाना।
0: जी कार्यक्रम में फोन किया, धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का खूबसूरत सा गीत।
2: हाँ।

0: हेलो
1: हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: और
1: आप कौन
0: कैसे
1: बात कर
0: हो?
1: रहे हैं? अपना नाम तो बताइए।
0: मैं तो खाना राम बात कर रहा हूँ। मुझे
1: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: यहाँ से ये किसान कॉलोनी से। हाँ
1: जी, हिसार से ही बात कर रहे हैं आप?
0: जी हाँ जी, सारे से। और
1: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
0: मैं तो जी कुछ नहीं करता, मैं तो घर पे रहता हूँ, ब्लाइंड व्यक्ति हूँ मैं तो।
1: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, हमारे रेडियो के कार्यक्रम आप सुनते हैं, हमें बताते रहते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं।
0: हाँ जी हाँ
1: जी
0: जी
1: बताइए, आज के कार्यक्रम में क्या सुनेंगे आप?
0: आज मेरे को जी ये एक बाप छह बेटे फिल्म का गीत सुनवा दीजिए।
1: जी बताइए कौन सा गीत?
0: घड़ी निधन की आई आई तू छुट्टी लेकर आ जा।
1: बहुत प्यारा गीत आप सुनना चाहते हैं। और
0: ओके
1: जी
0: धन्यवाद
1: जी
0: आपका।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।
0: ठीक है।

0: हेलो
1: मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैडम जी चकला बाजार समाना शहर जिला पटियाला पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल जी।
0: पप्पू राजा खुशदिल जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम जी बहुत अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आपका
0: अच्छा,
1: प्रोग्राम पेश करने का हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। और बताइए घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: मैडम जी बहुत अच्छे, और हम तो बहुत पुराने श्रोता हैं मैडम जी, वैसे तो
0: बिल्कुल
1: हम 1975 से प्रोग्राम सुन रहे हैं जी आकाशवाणी हिसार के लगातार जी।
0: जी, आकाशवाणी हिसार 1999 में बना है।
1: हाँ जी मैडम जी, बाकी सभी आकाशवाणियों पर हम पत्र और व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं जी।
0: जी बिल्कुल, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोग इतना समय देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बताइए आज के कार्यक्रम में क्या सुनेंगे आप?
1: मैडम जी हमारे परिवार के कुछ नाम और हैं जी।
0: जी बताइए।
1: हमारे पापा जी हैं सेठ परसोत्तम दास खुशदिल जी चकला बाजार समाना से, शंकर शंभू खुशदिल हसमुख लाल जिंदल पप्पू अनमोल खुशदिल, और हमारी बहुत सुंदर पत्नियां संगीता रानी जिंदल चकला बाजार समाना जिला पटियाला पंजाब से जी।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैडम जी पुरानी फिल्म जी आरजू उसका गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, बेदर्दी वालमा तुझको मेरा मन याद करता है। इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए हम आपका गुलाब के फूलों के साथ चार आकाशवाणी में पूरा स्वागत करते हैं जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू राजा खुशदिल जी। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी। जी
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका
1: धन्यवाद
0: जी। कौन बात कर रहे हैं हमसे
1: जी। मैं गांव पथवा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आपका नियमित श्रोता राजेश कुमार बात कर रहा हूँ।
0: जी? राजेश जी कैसे हैं, क्या करते हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और टीचर हूँ
0: टीचर हैं आप?
1: जी।
0: चलिए, अभी तो छुट्टियां होने वाली हैं।
1: हाँ अभी होने वाली है आजकल प्रोग्राम में तभी कॉल काफी दिनों बाद लगाया आज मैंने।
0: अच्छा, काफी दिनों के बाद कॉल लगाया है आपने।
1: जी
0: लीजिए, आपकी बात भी हो गई हमसे और आप अपनी पसंद का गीत भी सुनेंगे।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: गीत से पहले मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा, गर्मियों का मौसम है
0: जी
1: तो हम सभी जीव होने के नाते इंसान सर्वश्रेष्ठ जीव है तो अपना बचाव तो कर लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा ध्यान दें उन बेजुबान पक्षियों की तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज
1: तो
0: जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी है जी।
1: जी,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: हमें
1: थोड़ा
0: पशु
1: सा
0: पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए
1: हाँ
0: जी।
1: उनके लिए अपने थोड़ा सा दाना पानी का प्रबंध करें, पानी रखें।
0: बिल्कुल जी, आपका संदेश हमारे सुनने वालों तक और हम तक पहुंच गया है। बहुत बहुत आभार इस अच्छे से प्यारे से संदेश के लिए। अब बताइए, आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत आज सुनवाइए। फिल्म का नाम है पलकों बिछाओ में, किशोर कुमार आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी साहब ने गीत को लिखा है। लक्ष्मीकांत
0: जी
1: प्यारेलाल का संगीत है। गीत के बोल है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, अल्लाह मेघ दे।
0: चलिए, ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए अपने रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: आज की इस दिलकश बातचीत में शामिल होने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। आपकी आवाजों ने इस महफिल को अपनापन, मुस्कान और खूबसूरत एहसासों से भर दिया। फिलहाल आज का हलो हिसार कार्यक्रम यही होता है समाप्त, लेकिन ये रिश्ता यूं ही बना रहेगा संगीत और दिलों की धड़कनों के साथ। इसी प्यार के साथ सुनते रहिए आप सभी का अपना चहेता कार्यक्रम हलो हिसार। अब आपकी अपनी रेडियो हमसफर प्रीति ढिंडोरिया चाहती है लेना इजाजत आज की हलो हिसार कार्यक्रम से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आकाशवाणी हिसार के साथ गुनगुनाते रहिए।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार, हिसार।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेलो हिसार। प्रस्तुति थी प्रीति ढिंढोरिया की। ये आकाशवाणी हिसार है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी हिसार है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर

और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित किए जाने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 6:20 पर श्रोताओं आप सुन पाएंगे कार्यक्रम प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत। शाम 6:30 पर युवा उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और शाम 7 बजे खेती किसाना से ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। आज सुनेंगे कपास की पछेती बिजाई और देखभाल के तरीके, इस विषय पर बातचीत। 7:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम महरे गांव का। श्रोताओं आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत वेस्ट टू वेल्थ यानी गोबर धन योजना के बारे में।

एक फिल्म से। राष्ट्रीय हिंदी और अंग्रेजी समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समय रहेगा रात्रि 8:45 और रात्रि 9:00।

0: रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक सुनेगा विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को और श्रोताओं संदेश आपके गीत हमारे व्हाट्सएप पर आधारित आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति रहेगी। कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे रात्रि 11 बजे और राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आप सुन पाएंगे रात्रि 11:05 पर। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी हिसार है
1: किंतु पुराना बेहतरीन
2: नया श्रेष्ठ है केसरिया
1: तेरा किंतु पुराना श्रेष्ठतम
2: नया उत्कृष्ट है
1: तेरी गलियां किंतु पुराना अनमोल
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल को
2: नया अनूठा है
1: किंतु पुराना अनुपम
2: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
1: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
2: हर बुधवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: अर्ज किया है रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी रेडियो हिसार @gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: निमंत्रण दिया। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई CBSE नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने भिवानी में छापेमारी कर एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और जापान के बीच वर्षों से मजबूत राजनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी रही है। अगली पीढ़ी का औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने के

0: लिए जापान के साथ मिलकर लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं बन सकती हैं, जिससे बेहतर हरित और समृद्ध भविष्य का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित इंडो जापान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में पहुंचे जापान के निवेशकों को हरियाणा के साथ भागीदारी करने का निमंत्रण देते हुए कहा कि देश की विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओं में जापान की उन्नत तकनीक और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: तो जापान लेकर के आता है वो प्रेसिशन टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो भारत लेकर के आता है स्किल टैलेंट ग्रोथ एंड एस्पिरेशन, और हरियाणा इन दोनों के संगम पर खड़ा है। टेंस आज हरियाणा भारत में जापानी कंपनियों का सबसे बड़ा केंद्र बना है। लगभग 394 जैपनीज इंडस्ट्री एंड 600 से अधिक जैपनीज व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज हरियाणा में कार्यरत है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भारत जापान साझेदारी का सबसे जीवंत और सफल मॉडल किसी राज्य में दिखाई देता है तो वह हरियाणा है, जहां जापानी निवेश, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग ने विकास को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी नवाचार, निर्माण प्रौद्योगिकी, स्थिरता व भविष्य के लिए होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार तीन भाषाओं में से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि यह कदम अपनी अध्ययन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने का हिस्सा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा के लिए कक्षा 10 की कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट ने भिवानी में छापेमारी कर रोहित नाम के एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसटीएफ अधिकारी प्रीतपाल सांगवान ने एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए दावा किया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह राज्य के इतिहास में अब तक की नशीले पदार्थों की दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी है। उन्होंने बताया कि खुफिया सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद भिवानी में आरोपी के घर छापेमारी कर यह मादक पदार्थ बरामद किया गया।
2: कल हमारी एसटीएफ गुड़गांव की टीम सब इंस्पेक्टर विवेक के नेतृत्व में भिवानी मौजूद, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक आदमी यहाँ पे नशे की खेप लेके आया है। ऐसे भिवानी साहब से परमिशन लेके हमारी पार्टी ने वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया और उसकी मौजूदगी में तलाशी ली गई, तो इंदिरा कॉलोनी भिवानी के रोहित के घर से लोहे की अलमारी से 8 किलो 940 ग्राम चिट्ठा बरामद हुआ। पूछताछ में अभी तक ये पता चला है ये जो नशे का पदार्थ है ये पंजाब की साइड से लेके आता है और हरियाणा में सप्लाई करता है, तो इस पूरी चेन को ब्रश करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
0: उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस नशा तस्करी के धंधे में आरोपी रोहित का सगा भाई भी संलिप्त है। पुलिस जांच के अनुसार रोहित का भाई पहले से ही नशा तस्करी के मामलों में पंजाब पुलिस की वांछित सूची में शामिल है और अदालत द्वारा उसे भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। उसके खिलाफ पंजाब में NDPS एक्ट के तहत गंभीर

0: मामले दर्ज हैं। पुलिस को अंदेशा है कि इस रैकेट में कई अन्य स्थानीय डीलर, करियर और बड़े फाइनेंसर भी शामिल हो सकते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर इस अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट को चला रहे हैं। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग द्वारा पशुधन को भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रेम सिंह ने हमारी संवाददाता को बताया कि विभाग के सभी अधिकारियों को पशुपालकों को लू से बचाने के उपायों के प्रति जागरूक करने की हिदायत की गई है।
1: VLDS, पशु चिकित्सक SPOs एंड DD साहिबान को बताया गया है कि वो जितने भी हमारे पशु पालक हैं उनको निर्देशित करते रहें कि पशुओं को कैसे दूसरे गर्मी से बचाना है। पशुओं को छायादार वृक्ष के नीचे बांधे, शेड के नीचे रखें ताकि किसी प्रकार की डायरेक्ट हीट उनके शरीर के ऊपर ना पड़े। दूसरा, उनके अगर पंखे या कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं या स्प्रिंकल लगा सकते हैं, पशुओं को रेगुलर पानी देते रहें। पशुओं को एकदम सूखी थोड़ी ना खिलाएं, उसमें कुछ ना कुछ लावण मिश्रण जरूर मिक्स करें, हरा चारा मिक्स करके खिलाएं।
0: स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन को लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हमारे जींद संवाददाता को नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली ने जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए एहतियाती कदमों की जानकारी दी।
2: विभाग की तरफ से जैसे ही एडवाइजरी जारी की गई, वार्ड में अलग से बेड किट मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। पूरे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पेशेंट्स के लिए कूलर और जो संवेदनशील एरियाज हैं जैसे ICU है, इमरजेंसी है, उन डिपार्टमेंट्स में AC का इंतजाम कर दिया गया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के निवेशकों को हरियाणा में निवेश का निमंत्रण दिया। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई CBSE नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए सुनते हैं प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत।

ये आकाशवाणी हिसार है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं युवा उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल्का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया।

0: लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जी जी जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
0: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
0: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
0: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
0: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी,
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी,
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।

0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते।

0: ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
0: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर

0: बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: पाजी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये रो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे, इसको भी डालो।
3: हाँ,
2: ये देखो
3: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
1: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, ये और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: देखो देखो,
4: तो
5: ऐसा लग रहा है हमारा शहर हो।
1: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
1: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
1: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

0: जिसे सदा याद रखा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाए इनको हमें कहीं करनी न पड़े।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का।

0: कुमार सहयोग मीनाक्षी कुकरेती परामर्श अजीत होरो निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भी बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत। ये आकाशवाणी हिसार है, शाम के 7 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है खेती किसाना सेती कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, आप सुनेंगे बातचीत कपास की पछेती बिजाई और देखभाल के तरीकों के बारे में। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति खेती किसाना सेती।

0: खेती किसाना से थी सुनने वाले सारे किसान भाइयों ने और बणा ने अपनी बाण मीना मलिक की
1: और भाई संदीप की
0: राम राम, राम। और संदीप भाई आज हम किसान भाइयों खातर एक नया विषय लेकर आए हैं उत्तक संवर्धन के नए आयाम। आज हम एक ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक विषय पर चर्चा करने लग रहे हैं जिसने कृषि बागवानी औषधीय पौधे और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है और आज का ये हमारा विषय है जैसा कि अपन ने पहला किसान भाई तो बताया है उत्तक संवर्धन के नए आयाम। उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें पौधे के छोटे से भाग जैसे कोशिका उत्तक या तने के हिस्से को प्रयोगशाला में विशेष पोषक माध्यम पर विकसित करके एक नया पौधा तैयार कर सका है। यह तकनीक आज खेती बागवानी की दुनिया में किसानों और वैज्ञानिकों के लिए एक वरदान साबित होने लग रही है।
1: बिल्कुल, और मीनाबान आज आप एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए भाइयों को प्रोत्साहित करने लग रही है कि कृषि क्षेत्र में उत्तक संवर्धन भाइयों ये एक वो तकनीक है जिसके माध्यम से हम लैब में जो है स्वस्थ पौधे से अनेकों स्वस्थ पौध तैयार करे हैं और जिन सबका जो लाभ है वो किसान भाई को मिल सके है। इनसे जो तैयार पौध होगी उनसे मीनाबान जो किसान भाई है उनको खूब मुनाफा होगा क्योंकि रोग रोधी ये किस्में हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी इनमें नहीं आओगी और जो इनका उत्पादन है वो भी वैज्ञानिकों ने इनकी जो पहले वाली पीढ़ी है उनका रिकॉर्ड कर रखा है और उन्हीं के आधार पर ही उत्तक संवर्धन तकनीक का प्रयोग करके जो पौध वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी जावे हैं उनसे खूब मुनाफा जो है किसान भाई ने मिला है।
0: बिल्कुल, ये तने सही बात कही संदीप भाई क्योंकि देखो जो उत्तक संवर्धन की आप बात करने लग रहे हैं ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जैसा कि आपने

0: भी जिक्र करे है, जिसमें पौधे के किसी भी स्वस्थ भाग को नियंत्रित वातावरण में विकसित कर सका है और इस प्रक्रिया में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, हार्मोन, तापमान, प्रकाश उपलब्ध करवाया जाए। यानी कि संदीप भाई, पौधे ने जितने के पोषक तत्व किया, जितने हार्मोन किया, जितने तापमान की और प्रकाश की जरूरत पड़ेगी उतना ही उनको उपलब्ध करवाया जाए ताकि जो पौधे हैं वो तेजी से बढ़ सके। यानी कि आम भाषा में अगर आप बात करें, एक छोटे से पौधे के हिस्से से हजारों नए पौधे आप तैयार कर सके हैं जिसने आप उत्तक संवर्धन कमा है।
1: बिल्कुल, और कम समय में और सीमित स्थान में लाखों की संख्या में रोग मुक्त जो पौधे हैं वो इस तकनीक से तैयार करे जावे हैं। और इस विधि से जो है गन्ने, आलू, केले के जो अपनी फसलें हैं वो बिल्कुल वायरस मुक्त रहूंगी।
0: बिल्कुल है, क्योंकि जो आज हमारे सामने समस्याएं आने लग रही हैं संदीप भाई, बहुत सारी समस्याएं किसान भाइयों के सामने आवे हैं, जैसे कि बीमार पौधे, कम उत्पादन या फिर गुणवत्तापूर्ण जो पौधे हैं उनकी कमी होना, इन सभी समस्याओं का समाधान उत्तक संवर्धन के माध्यम से हमारे किसान भाई कर सके हैं।
1: बिल्कुल, और इस संवर्धन के दौरान पौधों में आने वाले अनुवांशिक बदलावों से सूखे और रोग प्रतिरोधी जो नई किस्में हैं मीनाबन में भी विकसित की जाने लग रही है।
0: और साथ में देखो जो पराग कण है उनते केवल आप एक पीढ़ी ते शुद्ध जो लाइने आप तैयार कर सका जिससे फसलों के सुधार में लगने वाला जो टीम है वो आधा उसके है।
1: बिल्कुल मीनाबन, आपने देखा होगा यदि आप ही देखो नर्सरी में कोई भी आप पौध तैयार करने लग रहे हैं तो उसमें आप ही विभिन्न प्रकार का खतरा रहो भाई, उसमें सूत्रकर्मी हो सके है, उस मिट्टी में अन्य विषाणु हो सके हैं, तो उससे जो है नर्सरी से ही जो पौध है उसमें रोग लग जावे है। और जो अगर वो रोग वाला पौधा जो किसान भाई है अपने जाके खेत में बोए है तो उसका जो है उसने पूरा मुनाफा नहीं मिल पाता। और यदि इस नई तकनीक की जो तैयार की गई पौध है उसका किसान भाई यदि प्रयोग करेंगे तो उसका कोई भी किसी भी प्रकार का जो रोग है वो हमारी फसल में नहीं होगा। और वैज्ञानिकों ने परखा है कि जो आलू हैं, टमाटर हैं, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो बिल्कुल रोग रोधी किस्में जो है हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की।
0: बिल्कुल, क्योंकि उत्तक संवर्धन से जो बने हुए भ्रूण है उनका हम कृत्रिम बीज बना सका है जिन्हें लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सका है।
1: और इसके साथ साथ यदि आप देखा तो कई जो किस्में है उनमें वैज्ञानिकों ने काफी सफलता पाई है। जो केले की G9 किस्म है इससे जो पौध तैयार करके जो किसानों ने उपज ली है तो 30-40% तक उसमें वृद्धि पाई गई है।
0: और इसी प्रकार से जो गन्ने की किस्म की अगर आप बात करें, तेजी से बढ़ने वाली और चीनी की अधिक मात्रा देने वाली जो रोग मुक्त किस्में हैं वो भी इसमें शामिल है।
1: और आलू का भी जो है इसमें वायरस मुक्त मिनी ट्यूबर का उत्पादन इस तकनीक के माध्यम से किया है जिसमें जो बीज की लागत है वह किसान भाई की बहुत कम हो जावे।
0: और औषधीय और सुगंधित जो पौधे हैं जैसे एलोवेरा है, अश्वगंधा है या स्टीविया है, इनका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन भी कराया जाने लग रहा है।
1: वो बिल्कुल मीनाबन, उसके साथ साथ जो बागवानी की किसान भाई करने लग रहे हैं तो उनके लिए पपीता, अनार, स्ट्रॉबेरी की जो किस्में हैं वो भी इसी तकनीक से तैयार की जाने लग रही है।
0: बिल्कुल, और इसके फायदे की अगर आप बात करें संदीप भाई, बहुत सारे फायदे किसान भाइयों ने मिलने लग रहे हैं। जे आप बात करें फायदे की, जैसे रोग मुक्त पौधों का निर्माण इस तकनीकी के माध्यम से जो पौधे तैयार करे जा हैं वो वायरस और अन्य रोगों से मुक्त हुए हैं, इससे फसल की जो गुणवत्ता है और उत्पादन है दोनों में ही बढ़ोतरी किसान भाई ले सके हैं।
1: और इसका एक फायदा और भी है मीनाबान, देखो जो हम पौध तैयार करने लग रहे हैं वो हम लैब के अंदर तैयार करने लग रहे हैं तो वहां पर जो नियंत्रित तापमान है तो वर्ष भर में किसी भी समय जो हमारे किसान भाई हैं वो जो अपनी पौध ले सके हैं। पहले उन वैज्ञानिकों को बताना पड़ेगा कि हमने जो है किस प्रकार के पौध किस मौसम में चाहिए तो उसके अनुसार जो है पौध तैयार की जा सके
0: और कम टाइम में अधिक पौधे हमारे किसान भाई ले सके हैं। जहां पारंपरिक तरीके से पौधे तैयार करने में महीनों लग जाया करें, अपना बेरा ही है ये बात तो संदीप भाई, वहीं टिश्यू कल्चर तय कम समय में हजारों पौधे हमारे किसान भाई तैयार कर सके हैं।
1: और इसका एक फायदा और भी है मीनाबान, देखो नर्सरी में यदि आप ये कोई पौध लगा वहाँ खुला में तो कोई पौध जो है हमारी अच्छे प्रकार से विकसित हो जाओ है तो कुछ पौधे कमजोर भी रह जावे है, लेकिन इस तकनीक के माध्यम से जो पौधे हैं वह सभी एक ही आकार, एक ही ऊंचाई और गुणवत्ता से हुए हैं, जिनका जो है कटाई और उनका जो प्रबंधन है वो आसान हो जावे।
0: और कुछ पौधे तो इसे भी है संदीप भाई, देखो जो इतना जिक्र करे है कि इस तरीके से जो टिश्यू कल्चर अगर हमारे किसान भाई अपनाएंगे तो एक गुणवत्ता और उत्पादन जो अक्षमता है वो भी बराबर की किसान भाई ले सके हैं, इससे कि जो आय है वो हमारे किसान भाई की स्थिर आय उसके है। किसान भाई ने बेरा पाट सके हमने इतनी आमदनी इस होगी। जो दुर्लभ पौधे हैं उनका भी संरक्षण इस विधि के माध्यम से हमारे किसान भाई कर सके हैं, क्योंकि कई ऐसे पौधे वो हैं जो विलुप्त

0: तो उन्हें के कगार पे है, उन्हें भी इस तकनीकी से हम सुरक्षित रख सका है।
1: बिल्कुल मनोरंजन भैया से बातचीत जारी रखेंगे, पर पहले भैया का करेंगे मनोरंजन, तो भाई सुनिए रागनी।

0: ऐसे टूटे ना नजरों से जो
1: संग रसी बदमनी पवन कर

0: मण भैया ने सुनी रागनी और बात कर रहे थे अपा उतक संवर्धन तकनीक की। फल और सब्जियों में अगर इसके उपयोग की बात करें, संदीप भाई जैसा कि तने पहले बताया है, उतक संवर्धन तकनीक का सबसे अधिक उपयोग फलदार पौधों और सब्जियों में भी होने लग रहा है, जैसे केला है, आलू है, स्ट्रॉबेरी है, गन्ना है, बांस है, अंगूर है। केले की खेती में टिश्यू कल्चर पौधे का जो उपयोग है तेजी से बढ़ने लग रहा है, क्योंकि इस तरह रोग मुक्त और एक समान आकार के पौधे किसान भाई ले सके हैं, इससे उत्पादन में भी काफी बढ़ोतरी हो जाएगी।
1: और बात यदि अपने प्रदेश के हिसाब से करा तो मीन अपन देखो जो अपना प्रदेश हरियाणा है, इसकी मिट्टी जो है अलग अलग प्रकार की है। कहीं पर पानी खूब लागे है तो कितने बरानी एरिया भी है। तो यमुनानगर कुरुक्षेत्र अंबाला करनाल जो बेल्ट है जहाँ पर पानी खूब है, तो वहाँ इस टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ना और केला की G9 जो किस्म है वह खूब किसान भाई लेने लग रहे हैं। और जो यदि आम गन्ना की जो बुआई किसान भाई करे हैं तो प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल गन्ना का बीज जो है उसने दबाना पड़े है, जिसकी कीमत जो है लगभग 12,000 रुपया तक किसान भाई ने वहन करनी पड़े है। जबकि टिश्यू कल्चर से यदि किसान भाई पौध लगाओगे तो जो बीज है वो लगभग बच जावे है, और इससे जो पौधे हैं दूर दूर 4 से 5 फीट की दूरी पर लगावे हैं, जिससे जो गन्ना है उसने पूरी धूप मिला है और प्रति एकड़ जो पैदावार है 450 क्विंटल से बढ़कर 600 क्विंटल तक पार भी चली गई है।
0: और इसका एक फायदा और है संदीप भाई कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका, हमारा जो ये उतक संवर्धन तकनीक है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है, क्योंकि उतक संवर्धन केवल खेती तक सीमित नहीं है बल्कि हमारा जो पर्यावरण है उसने भी संरक्षण प्रदान करा है। इसके माध्यम से हमारे किसान भाई जो दुर्लभ पौधे हैं उनका संरक्षण कर सके हैं, वनों की पुनर्स्थापना करने में भी यो मदद करे है और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में भी हमारी पूरी मदद ये करेगा। आज कई वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जो लुप्त प्राय पौधों को बचाने खातर टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग करने लग रही हैं।

0: बिल्कुल। और देखो, यदि आप ये बात मीनाबान ऐसी जगह की करें, किसान भाई कहेंगे भाई पानी वाली बेल्ट के बारे में तो हमें जानकारी दे दी, लेकिन जो हमारा रेतीला इलाका है जैसे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ जो है, तो उसके हिसाब से जो टिश्यू कल्चर के अनुसार जो खजूर है उसकी किस्में भी जो है बरी और मेदजुल जो है किस्में हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार करी हैं। और इन इलाकों में जहाँ पर पानी खारा है या वहाँ या कम है, तो वहाँ के लिए जो खजूर है वो किसान भाई लगा सके हैं। और टिश्यू कल्चर में खजूर का जो एक पौधा है करीब 2500 से 3500 रुपए का वह है, जिस पर सरकार जो है सब्सिडी भी दे हुआ है। और एक एकड़ में करीब 60 पौधे ला गए हैं, तो चौथे साल से जो एक पेड़ है उससे 70 से 100 किलो खजूर भाई ले सके हैं। और यदि एक एकड़ से सालाना किसान भाई जो है 4 से 5 लाख का मुनाफा भी किसान भाई कम पानी में टिश्यू कल्चर के माध्यम से लगाए गए खजूरों से ले सकें।
1: बिल्कुल सही बात कही संदीप भाई, क्योंकि देखो तूने जिक्र कराया कि जो सरकार है वो भी पूरा ध्यान देने लग रही है इस तकनीक पे। आज सरकार और कृषि विश्वविद्यालय भी किसानों की टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग के लिए प्रेरित करने लग रहे हैं, क्योंकि इससे के भाई उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने लग रही है, आप देखा हाँ। और रोग जो हमारी फसल है उसमें कम देखने को मिले हैं, बाजार में अच्छी कीमत मिले है, क्योंकि देखो अगर हमारी फसल बढ़िया होगी तो अच्छी आमदनी भी हमने मिलेगी और खेती अधिक लाभकारी बनती जाने लग रही है। हालांकि शुरुआत में देखो इस लागत में थोड़ी सी अधिक अपना लागत तो लगानी पड़ेगी, लेकिन लंबे समय में किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सका है तकनीक, अगर हमारे किसान भाई ये तकनीक अपनावें।
0: बिल्कुल। और सोनीपत और जो जींद के किसान हैं मीनाबान, वो इस तकनीक का लाभ उठाने लग रहे हैं और टिश्यू कल्चर से स्ट्रॉबेरी जो है वो लगाने लग रहे हैं। और इस टिश्यू कल्चर से जो स्ट्रॉबेरी लगाई गई है उसका जो फल का साइज है और जो रंग है वो भी बहुत बढ़िया है, और उससे खूब मुनाफा जो है हमारे किसान भाई लेने लग रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज टिश्यू कल्चर को बायो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के अगर आप देखा तो संदीप भाई नई किस्में विकसित करी जाने लग रही हैं, जो अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता ने भी बढ़ावे हैं। जलवायु परिवर्तन की अगर आप बात करें, ऐसे पौधे विकसित करे जाने लग रहे हैं जो सूखा और अधिक तापमान और खराब मिट्टी में भी अच्छी पैदावार किसान भाइयों ने दे सके हैं। वैज्ञानिक भविष्य में अंतरिक्ष में खेती की संभावनाओं पर भी काम करने लग रहे हैं, जहां टिश्यू कल्चर तकनीक अहम भूमिका निभाने लग रही है।
0: बिल्कुल। और जो हरियाणा के किसान हैं वो यदि टिश्यू कल्चर के हिसाब से खेती करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों को मीनाबान सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो है अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा, उसमें अपनी जमीन का और फसल का अपना पंजीकरण कराएं। और इसके बाद जो है हॉर्टिकल्चर पोर्टल पर भी जो है किसान भाइयों को आवेदन करना पड़ेगा। जो हरियाणा विभाग की वेबसाइट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा पर जाके टिश्यू कल्चर योजना के तहत किसान भाई ऑनलाइन आवेदन करें, और इस योजना के लिए जो किसान भाई हैं उन्हें अपना आधार कार्ड, जमीन की फर्द, बैंक पासबुक की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी। और इसके बाद जो ब्लॉक का बागवानी अधिकारी है वो किसान भाइयों के खेत में जाके मौके का मुआयना करेगा, और जो रिपोर्ट है वह भी भाई ऑनलाइन चढ़ाई जाओगी। और इसके बाद जो है सब्सिडी का जो लाभ है मीनाबान वो सीधा किसान भाई के बैंक खाते से दिया जाओगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो ये इतने बहुत सारी जो चीजें बताई हैं संदीप भाई, जरूरी जो दस्तावेज हैं वो क्या क्या हमने चाहिए, ये पैसा कि अगर आप बात पौधे खरीदने का जो पक्का बिल है अपलोड करते ही सब्सिडी की राशि सीधे मतलब जो किसान है बैंक खाता में उसके खाता में आ जाएगी, यानी कि उसी समय उसके खाता में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और देखो अगर यह टिश्यू कल्चर तकनीक ने अगर किसान भाई अपनाओगे तो पौधों की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उनकी मांग बढ़ेगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी लाभ पहुंचेगा। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी चुनौतियां हैं संदीप भाई, क्योंकि प्रयोगशाला स्थापित करने में अधिक खर्च किसान भाइयों ने करना पड़ सके, प्रशिक्षित जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी जरूरत हमने पड़ेगी, और बिजली और नियंत्रित वातावरण की भी जरूरत पड़ेगी, और छोटे किसानों तक यह तकनीक मतलब सीमित मात्रा में ही पहुंच पाओगी। लेकिन सरकार और वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रयासों से ये चुनौतियां धीरे धीरे कम होने लग रही हैं। और ये बन भाइयों का करवा दें हम नरेंद्र भाई, सुनेंगे रागनी।

उसके कौन है जब्बरियों से।

जिस मानस में चोट आया जा भाई दे दे खुदकारा, जिस दौरे तो अन्य हो जा सपने लागे प्यारा, एक बेल के कोई फल लागे कोई मीठा।

ऐसे की कलम बने और एक का बन जा धारा, एक मट्टी के बने दो बर्तन भेद बता जो सारा, एक तबूंगे पानी का बर्तन एक बन जा घी का बारा।

0: मण भाई ने सुनी रागनी और संदीप भाई ये अपना कार्यक्रम खेती किसाना सेती का समय समाप्त हो लिया। अपने बाण मीना मलिक ने
1: और भाई संदीप ने दे इजाजत
0: सारे मण भाई ने राम राम।

0: अरे कौन सा प्लांट है?
1: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, चंदू क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रहे तेरी समझदारी का फल।
2: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती किसाना सेती कार्यक्रम, ये आकाशवाणी हिसार है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हरे गांव।

0: कार्यक्रम हरे गांव में एक बार फिर आपकी बाण मीना मलिक
1: और भाई संदीप सबका स्वागत कर रहे हैं।
0: और आज हम किसान भाइयों खातर और बणा खातर बहुत खास बातचीत लेकर आए हैं कि किचन वेस्ट है कंपोस्ट आप क्यों कर तैयार कर रहा। संदीप भाई, एक अच्छा नागरिक होने खातर हमारे

0: इस शहर को स्वच्छ बनाना और हर जगह पेड़ पौधे लगाना हमारा एक नैतिक कर्तव्य बना है। और ये बात बहुत ज़रूरी भी है संदीप भाई, क्योंकि अपने पर्यावरण की देखभाल अगर आपा नहीं करांगे तो कौन करेगा। स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बना है और रसोई के कचरे तय खाद बनाना भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है।
1: बिल्कुल। और देखो, जो अपना रसोई का कचरा है मीनाबान, यदि आप उसने इधर उधर फेंकांगे तो गंदगी फैलेगी और उससे जो है अपना वातावरण भी दूषित होगा। और इसकी जगह यदि हम उसके कंपोस्ट बना के यदि प्रयोग कराएं और अपने पेड़ पौधों में प्रयोग कराएंगे तो एक से प्राकृतिक खाद इन्हें मिलेगी और जो वातावरण है हमारा वो भी अच्छी प्रकार से संतुलित रहेगा।
0: क्योंकि देखो संदीप भाई, आप देखा कि अगर आप अपने भारत देश की बात करें, हर रोज शहरी क्षेत्र में एक घर में तकरीबन 700 से 800 ग्राम ठोस कचरा आप फेंका। अगर आप आपके घर में 5 सदस्य हैं तो सोचो कि आपका परिवार एक वर्ष में लगभग कितना कचरा, ठोस कचरा है जो फेंक के है, करीबन 1500 किलो। तो क्या हम इस बात पर चर्चा करें, इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि अपने घर पे ही उस कचरे तय प्राकृतिक खाद आप बना सका। हाँ, खाद बनाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों तय भरपूर कंपोस्ट में विघटित करा है। और कंपोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ या खाद कूड़े को पानी वायु की मदद तय सूक्ष्म जीव खाद के रूप में परिवर्तित आप कर सका। हाँ,
1: और बिल्कुल। और मीना बन, आप ही देखा कि कुछ सोसाइटी तो शहर में ऐसी भी हैं जो बहुत ही अच्छा काम इस संदर्भ में करने लग रही हैं। अपन देखा होगा विभिन्न जो सेक्टर हैं वहाँ पर भी जो सोसाइटियाँ हैं वो मिल के न जो पार्क का एक कचरा है मीना बन उसने मिला के जो फल के जो छिलके हैं घरों के हैं और जो साथ में पार्क में जो पौधे लगा रखे हैं उनके जो पत्ते हैं उन सब ने मिला के एक गड्ढा में डाल दिए हुए हैं और उस पर जो समय समय पर पानी का छिड़काव भी करते रहे हैं, जिससे जो है एक तो कचरा का जो निष्पादन है वो वहीं की वहीं हो गया, घर का जो कचरा है उसका निष्पादन भी हो गया और जो पार्क में जो पत्ते खिंड दे हांडने लग रहे थे उनको भी एक जगह एकत्रित करके उनकी खाद बना दी गई और जो पार्क में जो पौधे लग रही हैं उनको भी जो है इससे बेहतर पोषक तत्व मिल गए। क्योंकि कई भाइयों को होंगे मीनाबान कि हम जो किचन का जो कचरा है उसका जो है हम कंपोस्ट तो बनाना चाहवा लेकिन हमने हमारा सारा घर पक्का कर रखा है, तो भाई यदि आपकी इच्छा शक्ति है तो राहें बहुत सारी हैं मीनाबान।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर इंसान कुछ करना चाहो संदीप भाई तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जिसने इंसान नहीं कर सकता। तो आप इसके रसोई जो अपशिष्ट की आप बात कर रहे हैं, खाद के जो लाभ हैं वो कौन से हैं जिससे हमारे किसान भाई उसका फायदा उठा सके।
1: तो इसमें मीनाबान जो रसोई का कचरा है जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फलों के टुकड़े हैं, बचौड़ी चाय पत्ती है, कॉफ़ी के अवशेष हैं, तो ये जो है अक्सर लैंडफिल में चले जावे हैं जिससे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्पादन हुआ है और घर पर इन सामग्रियों को खाद बनाने में प्रयोग किया जा सके है, जिससे जो है लैंडफिल में जाने वाला जो कचरा है इसकी मात्रा में कमी आओगी और जिससे जो पर्यावरण है इस पर जो होने वाला दुष्प्रभाव है वो भी कम हो जाओगा।
0: बिल्कुल, और मिट्टी स्वास्थ्य को भी बढ़ोतरी मिलेगी। खाद पोषक तत्वों से भरपूर कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरकता न बढ़ावे है। जब इसे बगीचा की क्यारी में आप डालेंगे संदीप भाई या टॉप ड्रेसिंग के रूप में इसने इस्तेमाल करेंगे तो यह मिट्टी की संरचना, जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार करेगा। कंपोस्ट का प्रयोग पौधों की बढ़ोतरी को बढ़ावा देने खातर और फलों और सब्जियों की उपज बढ़ाने खातर आप इसका प्रयोग कर सका।
1: बिल्कुल, और जो रसोई का कचरा से यदि आप ये खाद बनावांगे तो जो आप इन मोल खाद लेनी पड़े हैं मीनाबान उसका भी यो एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसके लिए आप इन कोई रुपए नहीं देने हैं और अपने जैविक कचरे को आप रिसाइकिल करके न केवल अपने पैसे बचा सका हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी आप योगदान दे सका।
0: बिल्कुल संदीप भाई, ये तो थी बात कि भी आप जो रसोई अपशिष्ट खाद है उसके के फायदे हो सके हैं, लेकिन एक बात और है कि आपने खाद बनाना हो तो आपने किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी।
1: बिल्कुल, और देखो मीनाबान ये जो आप इन सबसे जो बढ़िया आपने बात बताई कि किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो भाई इसके लिए कोई आप इन्हें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो खाद बनाने के लिए जो है आप इन्हें एक डब्बा जो है लेना पड़ेगा जिसको जो है आप ऐसी जगह आप तय कर लें कि जहाँ पर जो आप अपना कचरा है उसने रोज़ वहाँ पर डाल सकें और खाद के डिब्बे में विभिन्न आकारों और डिज़ाइन में उपलब्ध हैं, आप किसी भी प्रकार का ले सकें हैं। और या फिर अपने आप ऐसा भी नहीं चाहते हैं तो अपना जो बगीचा है उसमें एक कोने में साधारण ढेर में इस उद्देश्य से आप इसकी पूर्ति कर सकें हैं, यानी कि अपना जो घर का

0: कोई भी कच्ची जगह है वहां पे एक गड्ढा आप बना सकें।
1: और दूसरी जो सामग्री की आप बात करा संदीप भाई, भूरा और हरा पदार्थ, ये आप देखा आगे देखो नगर निगम वाले जो कूड़ा कचरा उठाना हुआ है उसने, मैं भी ये वो डब्बे अलग अलग बने हुए हैं, ये गीला कचरा है, ये हरा कचरा है, ये मतलब फेंकने वाली चीज है। तो इसी प्रकार से जो खाद बनाने खातर भूरे रंग की जो सामग्री है और हरे रंग की जो सामग्री है उसका संतुलन होना बहुत जरूरी है। भूरे रंग की सामग्री में सूखे पत्ते, पुआल और कटे हुए अखबार शामिल है, जबकि हरे रंग की सामग्री में रसोई का जो कचरा है जैसे फल, सब्जी के छिलके, कॉफी के अवशेष और अंडे के छिलके शामिल हैं। यानी कि इनको अपने अलग अलग दोनों डिब्बा में अलग अलग डालना पड़ेगा, हरे रंग की सामग्री और भूरे रंग की सामग्री।
0: और इसके साथ साथ है मीनाबाण अपने पानी का भी ध्यान बना जो है रखना पड़ेगा। खाद बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें जो है पर्याप्त नमी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये सूखी रहेगी तो जो प्रक्रिया हमने शुरुआत कर रखी है वो रुक जाओगी। तो खाद के ढेर में नमी बनाने के लिए ये सुनिश्चित करें कि जो पास में जो पानी का डिब्बा है या फिर कोई ऐसे नलकी रखें कि जिसमें जो है आप समय समय पर लगातार उसमें पानी दे सकें।
1: बिल्कुल, और वायु संचार भी बहुत जरूरी है संदीप भाई, अगर हम इस तरीके की मतलब बागवानी आप करांगे। खाद को नियमित रूप से पलटन खातर खाद को पलटने वाले जो उपकरण है उन पर अपन देखो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और पिच फोर्क का उपयोग भी अपन करना पड़ेगा।
0: ऐसा इसलिए है मीनाबाण क्योंकि यदि हमने एक जगह पर ही खाद जो अपना अवशेष जो है छोड़ दिए तो कहीं पर जो खाद है पूरी गल जाओगी तो कहीं पर बिना गले हुई रह जाओगी, तो उसका जो है पूरा लाभ जो है हम नहीं ले पावांगे। तो इसको समय समय पर जो है ऊपर वाली जो खाद है उसको नीचे करने के लिए और नीचे वाली खाद है उसको ऊपर करने के लिए हमें समय समय पर जो है इसकी उल्टा पलटाई करनी पड़ेगी।
1: और रसोई के कचरे तय खाद कैसे बनावा, अपना जो कंपोस्ट है बिन या ढेर स्थापित करें, अपने कंपोस्ट बिन के लिए एक स्थान चुने, अपने पिछवाड़े में कंपोस्ट के ढेर के लिए एक क्षेत्र निर्धारित अपन करना पड़ेगा, अच्छी जल निकासी और आसान पहुंच सुनिश्चित अपन करनी पड़ेगी। यदि हम कंपोस्ट बिन चुना हा तो सुनिश्चित करा कि इसमें उचित वायु संचार और जल निकासी की जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और जो रसोई का जो अपना कचरा है जो फलों के सब्जियों के छिलके हैं इनको जो है अपने एक जगह पर डालना है, और जो सूखे पत्ते और जो कटे हुए अखबार भूसे जैसी जो सूखी सामग्री है उसको अपने अलग से डालना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो इनका तने जिक्र करे संदीप भाई, भूरे रंग के जो पदार्थ हैं या फिर हरे रंग की जो सामग्री है, भूरे और हरे पदार्थों की जो परत है बिछा के खाद बनाने की प्रक्रिया अपने शुरू करनी पड़ेगी। सबसे नीचे भूरे पदार्थों की परत बिछा के शुरुआत करें, उसके बाद रसोई के जो कचरे की परत है वो बिछाएं हमने। इस प्रक्रिया को अपन दोहराना है, सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परत अपेक्षाकृत जो है वो पतली हो ताकि उचित वायु का संचार उसमें हो सके। और बातचीत संदीप भाई आप करते रहेंगे, मन भाई ने पहला सुना दे हाँ रागनी
2: और जो कभी थी रंग महल में

ठीत भरे तार के भाई किसू वो पाया मैं धर दूंगी और खान पीवड़ की।

छाया बहुत ने ओद बड़ी सियाणी की हां भरके वो शेर सुना दे वो इस मीठी वाणी की और पूरण

सबके काज सारता साजन बन में वो घूंघट करी तेरा दुख दुख करूं आरता। और दुनिया में बर्तन की खटरी यार

0: खातर हमने कौन से सुझाव हमारे खातर जरूरी हैं।
1: बिल्कुल, वैसे तो देखो रसोई के कई कचरे जो हैं ऐसे हुए हैं जिनसे आप ही खाद बना सका, हाँ लेकिन कुछ से आप इन्हें बचना चाहिए। भाई जैसे मांस है, डेयरी के उत्पाद हैं, तेलीय खाद्य पदार्थ हैं, ये चीज़ें जो है कीटों को आकर्षित कर रहे हैं और खाद बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है मीना बाण उसमें धीमा करते हुए हैं।
0: और जो बड़ी वस्तुएं हैं भाई उनको कुचल कर डालना चाहिए अपन या काटना चाहिए, क्योंकि अपघटन को तेज करने खातर जो बड़े रसोई के कचरे को खाद के ढेर में डालने से पहले उन्हें अपन अच्छी तरह से काटना चाहिए और कुचलना चाहिए। छोटे टुकड़े अधिक तेजी से और कुशलता से विघटित तो हो सके हैं अपन बेरा है, लेकिन जो बड़े टुकड़े हैं उनको अपन थोड़ी सी उनकी काट छाट करनी पड़ेगी।
1: और इसके साथ साथ मीना बाण हमने समय समय पर जो है जिस गड्ढे में हम खाद बनाने लग रहे हैं उसका हमने निरीक्षण करते रहना है और ये सुनिश्चित करना है कि भूरे और जो हरे रंग के जो पदार्थ हैं उनमें सही संतुलन बना रहे, क्योंकि यदि आपकी खाद बहुत ज़्यादा गिल्ली और बदबूदार लगने लग जाओ कि आपने लगे कि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है कभी कभी, तो उसमें भूरे पदार्थ डाल देवें ताकि वो जो है पानी ने सोख लेवें। और अगर यह बहुत ज्यादा सूखी है और सड़ नहीं रही है तो उसमें मीना बाण हरे पदार्थ जो है हमने मिलाने पड़ेंगे
0: और मिश्रण में लाभकारी जो सूक्ष्म जीव हैं उनको भी अपन शामिल करना पड़ेगा। बगीचे की मिट्टी या तैयार खाद जैसे खाद उत्प्रेरकों को मिलाकर अपघटन प्रक्रिया को अपन तेज करना पड़ेगा। तापमान संबंध ये था कंपोस्ट उत्प्रेरकों का उपयोग जो मैंने अभी जिक्र करा है संदीप भाई कि मिश्रण में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं उनको शामिल करने खातर अपने बगीचे की मिट्टी और तैयार खाद जैसे खाद उत्प्रेरकों को मिलाकर अपघटन जो प्रक्रिया है उसको तेज करा। और तापमान संबंधी विचार पे भी अगर अपन बात करा,
1: बिल्कुल यदि तापमान में यदि खाद बनाने के लिए ज्यादा है कारगर औषधि उसका है, यदि आप ठंडे मौसम में रहने लग रहे हैं तो गर्मी बनाए रखने के लिए खाद के ऊपर जो है पुआल या कार्डबोर्ड जैसी जो चीज़ें हैं वो आप इन्हें डालनी पड़ेंगी ताकि जो है उसका तापमान जो है ज़्यादा न गिर जाए और रसोई के कचरे से खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ स्थिरता की दिशा में एक कदम नहीं है बल्कि पर्यावरण को पोषित करने के प्रति भी अपनी एक प्रतिबद्धता है।
0: बिल्कुल, और इब बात आ है संदीप भाई कि किस प्रकार के रसोई अपशिष्ट से आप खाद बना सका है। हालांकि रसोई के कचरे से क्या है कि खाद बनाने खातर चीजें ढूंढना आसान है, लेकिन कुछ खाद अवशेषों को इस्तेमाल करने के योग्य खाद की चीजें समझना मुश्किल हो सके है। हाँ हरी जो सब्जियां हैं वो जरूरी है, लेकिन रसोई के सभी सामान रसोई के कचरे से खाद बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देखो कुछ चीजें रसोई में हमारे इसी भी हों भाई जो हम खाद बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, और जो सबसे अच्छी चीजें हैं उसमें सूखे पत्ते, जड़ी बूटी, मसाले, फलों के छिलके जैसे भाई केला का छिलका है, सेब का, संतरा का, घास है, ब्रश की छटाई है, रोटी, अनाज, गेहूं के टुकड़े और जो कॉफ़ी की तलछट है, चाय की थैलियां हैं, इनका जो है आप ये प्रयोग कर सकें।
0: और भाई जो खाद अपशिष्ट के खाद बनाने के जो लाभ हैं उनके आप बात करें तो संदीप भाई बहुत सारे लाभ हैं उनके।
1: बिल्कुल, और देखो जो रसोई का जो अपना कचरा है तो मीना बाण वो कम हो गया और इसके साथ साथ जो हमारे जो पौधे हैं उनके लिए हमने बिना कोई खर्च करे जो है अपनी रसोई से ही खाद बना ली है और पर्यावरण को भी जो है हमने किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं पहुंचाया।
0: बिल्कुल, और खाद अपशिष्ट के और अधिक समाधान भी किसान भाई मतलब इस तरह खोज के हैं और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा दे सके हैं, खेत से मेज तक समाधान इसका शुरू कर सके हैं किसान भाई, क्योंकि देखो रसोई के कचरे से खाद बनाने से खेत से लेकर मेज तक का अभियान चलाया जा सके है और जो फसलें हैं अच्छी वो इससे आप उगा सकें और इस रसोई में इस्तेमाल के लिए जो आप चीजें रख रखी हैं अपन जैसे साग सब्जियों की बात करें उनकी कटाई छटाई आप कर सका हाँ, भारत खाना खरीदन तय होने वाला जो कार्बन उत्सर्जन है उसने भी आप कम कर सका हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसने आप अपना सका हाँ, जो फालतू के खर्चे हैं बाहर के आप देखो संदीप भाई क्योंकि जीवन यापन के लिए हर रोज मार्केट में तो साग सब्जी भी अपन खरीद के लानी पड़े हैं, अगर आप घर में ही इस प्रकार का खाद बना के किचन गार्डनिंग आप करा तो एक तो शुद्ध सब्जी आप मिले, दूसरा जो बाजार तय आप साग सब्जी खरीद कर लिया उस अनावश्यक खर्चा से भी आप बच सका।
1: और इसके साथ में मीना बाण इस चीज के भी हमारे मन में संतुष्टि रहोगी कि जिस जो बेल हमने वहां पर लगा रखी या कोई सब्जी की क्यारी हमने वहां पर तैयार कर रखी है तो उसमें किसी भी प्रकार का जो है रासायनिक जो खाद है उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कीटनाशक का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि प्राकृतिक तरीके से जो हमने अपने घर में

0: बनाई थी उसी का ही हमने प्रयोग कराया है। और इस प्रकार के यदि सब्जी का हम प्रयोग करेंगे तो ये जो सब्जी है विटामिन मिनरल से भरपूर रहेगी।
1: और संदीप भाई बड़माया ने भी सुनवा दिया। हाँ रागनी।

संती माता ये भाई इतलो तमान खोए रंगीरिसी दुर्वा साये तिलो ऋषियों के मन मोए सूरत सुमरन इंद्र संता ये इसके खूब डबोए।

ये तेरी याद में भरमाए दो दो ब्याह करवा करवा के पाछ के सुख पाए चित्र क्या तू भूप चरोड़ा कई कई रानी ल्याए तेरे खुआ के बेटा माया जब

0: मालवा या ने सुने रागनी और ये कार्यक्रम हमारे गांव का समय समाप्त हो लिया अपनी बाण मीना मलिक ने
1: और भाई संदीप ने दे इजाजत
0: सारे बाण
1: भाई
0: या ने
1: राम
0: राम, राम।

फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माहरे गाँव। ये आकाशवाणी हिसार है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी लोकगीत और कार्यक्रम का आगाज करेंगे गुरदास मान के गाए इस पंजाबी गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पंजाबी लोकगीत और आपने सुने गुरदास मान के गाए गीतों को। और अब समय अंतराल का, अंतराल के बाद पंजाबी लोकगीतों का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहें आकाशवाणी हिसार।

फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।

श्रोताओं, इसी पंजाबी गीत के साथ आज का ये लोक पंजाबी लोकगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। आपने सुने गुरदास मान के गाए गीतों को। ये आकाशवाणी हिसार है और लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खुला आकाश।

खुलाकाश कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से, और आज की फिल्म रहेगी 1968 में आई, 1968 में आई फिल्म आबरू। की गीत आप सुनेंगे दीपक कुमार और विमी पर यह गीत फिल्माया गया। श्रोताओं, मोहम्मद रफी साहब की आवाज रहेगी। जीएल रावल साहब ने इस गीत को लिखा और मास्टर सोनिक का संगीत आप सुनेंगे इस फिल्म में। श्रोताओं, वैसे तो मुख्य कलाकारों में दीपक कुमार और विमी रहे, लेकिन अशोक कुमार, निरुपा रॉय, रहमान, लीला नायडू और शशिकला जैसे सितारों ने काम किया। तो सुनते हैं कार्यक्रम एक फिल्म से के अंतर्गत आबरू फिल्म का ये पहला गीत।

श्रोता हूँ, आपने सुना मोहम्मद रफी साहब को, और सुने और बस सुनते रहीं ऐसी आवाज श्रोताओं। इस गीत को श्रोताओं आशा भोसले जी ने भी इस फिल्म में गाया है। बहरहाल आपने सुना मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गीत, और इसी स्वर को एक बार फिर से सुनते हैं। फिल्म रहेगी वही यानी आबरू। 1968 में ये फिल्म आई और ये गीत फिल्माया गया अभिनेता दीपक कुमार और अभिनेत्री विमी जी पर। जी एल रावल साहब ने इस गीत को लिखा और संगीत इस गीत में रहेगा मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी का। तो सुनते हैं इसी मिजाज का एक और गीत।

श्रोताओं, एक फिल्म सी के अंतर्गत आप सुन रहे हैं 1968 में आई फिल्म आबरू के गीतों को। गीत फिल्माया गया दीपक कुमार अभिनेता और अभिनेत्री विमी जी पर। जी एन रावल साहब ने इस गीत को लिखा और मोहम्मद रफी साहब की दिलकश आवाज आप सुन रही हैं। मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक का संगीत रेडियो सेट पर बज रहा है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक फिल्म से। आपने सुने श्रोताओं आबरू फिल्म के गीतों को। 1968 में ये फिल्म आई थी और वैसे तो श्रोताओं इस फिल्म में प्रेम धवन साहब ने भी गीतों को लिखा था और इस फिल्म के कई गीतों में मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी। आशा भोसले जी ने इस फिल्म के गीतों को गाया तो वहीं मुकेश जी की भी आवाज फिल्म के गीतों में सुनने को मिलती है। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा कि आपको इस फिल्म के और गीतों को सुनवाया जाए, फिर किसी और महफिल में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में एक फिल्म से के अंतर्गत मुकेश जी की दिलकश आवाज को। बहरहाल अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हिसार है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर

0: एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा

अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था, ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी

0: के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पर इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

और अब लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मुकेश। फिल्म का नाम है संगम। रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रोशन का संगीत साहिर लुधियानवी के बोल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजी फिल्म ताजमहल के लिए।

0: इस युगल गान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंडके। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत

गीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: है तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना, ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घीउन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोकधुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखा।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर कर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। ये आकाशवाणी हिसार है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं और लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है व्हाट्सएप के संदेशों पर आधारित संदेश आपके, गीत हमारी।

आकाशवाणी हिसार सुनने वाले तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे के अंतर्गत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपने पसंद के गीत। श्रोताओं, ये कार्यक्रम दिलों को जोड़ता है। आपके भेजे गए संदेश और उन संदेशों के साथ सजते हैं आपके मन पसंद गीत। और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। अगले 60 मिनट तक श्रोताओं हम बिताएंगे कुछ खूबसूरत यादों के साथ। दोस्तों, आज के दौर में व्हाट्सएप सिर्फ संदेश भेजने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये रिश्तों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत डोर बन चुका है, जिसके एक छोर को आप तमाम संगीत प्रेमियों ने बड़े मजबूती से थामा हुआ है, तो वहीं दूसरे छोर को आकाशवाणी हिसार के हम तमाम प्रस्तोताओं ने थाम रखा है। श्रोताओं, आइए शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफर की, जहां होंगे आपके संदेश और गीत होंगे हमारे। तो श्रोताओं, आज है शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन। तो 1990 के दशक की सबसे बड़ी म्यूजिकल सनसनी जिस गीत ने मचा दी, उस गीत को हम सुनेंगे कार्यक्रम के पहले गीत के साथ। मैं अल्फाज हूं तेरी हर बात समझता हूं, मैं अल्फाज हूं तेरी हर बात समझता हूं, मैं एहसास हूं तेरे जज्बात समझता हूं। कब पूछा मैंने कि क्यों दूर हो मुझसे, कब पूछा मैंने कि क्यों दूर हो मुझसे, मैं भी दिल रखता हूं तेरे हालात समझता हूं। तो श्रोताओं, हम समझते हैं आपके तमाम हालातों को, आप हाले दिल हमसे साझा जो करते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। श्रोताओं, जो गीत हम सुनेंगे वो गीत नहीं बल्कि एक उत्सव है। और हम फिल्म का श्रोताओं ये गीत 1991 में आई फिल्म कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले की आवाजों ने श्रोताओं इस गीत को एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसका शानदार संगीत तैयार किया सुपरहिट जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और श्रोताओं, इस गीत को आज भी हर पार्टी और मंच पर सुना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है श्रोताओं इस गीत की कि रिलीज के बाद देश भर में जुम्मा जुम्मा स्टाइल जबरदस्त इस गीत का क्रेज जो था वो देखने को मिला, सुनने को मिला और स्टेज शो या ऑर्केस्ट्रा भी इस गीत को पहली पसंद के तौर पर प्रस्तुत करने का मन बनाते हैं। तो हम भी आज इस कार्यक्रम में इस गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे और हमारे इन तमाम श्रोताओं को कार्यक्रम से जोड़ते हैं और कार्यक्रम से जुड़ रही हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहन नेवादा जिला गाजीपुर से हमारे श्रोता रहेंगे प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ते हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीके पुरी, कैलाशपुरी, नीलम, रामा, पाली, सुनील पाठक और तमाम मित्रगण। और लीजिए जिला

के दादरी गांव चिड़िया दुदुहा से सोनू सघेलिया मंजीत तनीश और तमाम परिवार के सदस्य रहेंगे। इन तमाम श्रोताओं के साथ लोहारू हरियाणा से हमारे श्रोता रहेंगे बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार बरखा योगेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार और तमाम परिवार के सदस्य। और निंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता रहेंगे दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। पहले ही गीत के साथ आइए आज शामिल कर लेते हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान के श्रोताओं को, मेहरा अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति और भूमिका अरोड़ा को। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे श्रोता रहेंगे मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। करणवीर हाउस भूचो केंचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दीपेंद्र वरिंदर कुलदीप सिंह एकम दमन और अभिजोत। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ रही हैं फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल खेड़ा लाडी खेड़ा शालनी खेड़ा टिवांशी वाणी खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार के सदस्य। मुंडीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरव शर्मा सायना शर्मा और निवान शर्मा। और लीजिए मनदीप सिंह नसीब विनू बबलू शगुन शेठी विनू घोलू खरकपुनिया से हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा शविस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। तो सुनते हैं अमिताभ बच्चन साहब पर फिल्माया गया किमी कटकर जैसे सितारों से इस फिल्म में एक नई जान फूंक दी। आनंद बख्शी साहब की रचना रहेगी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत रहेगा।

इत्तेफाक देखिए श्रोताओं की आज जुम्मा है यानी शुक्रवार है। बहरहाल अमिताभ बच्चन जी और किमी कटकर के इस शानदार गीत को आपने सुना। सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस गीत का संगीत तैयार किया था। श्रोताओं आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, और इस क्रम में लीजिए अब हमारे अगले श्रोता जुड़ते हैं कार्यक्रम की अगले गीत से। और श्रोता रहेंगे पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, बोरछा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ते हैं हमारे श्रोता आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघील, मोरस जंघील, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघील और नंदिनी जंघील, धमधा ग्राम सुर्खी कला से अमित शगुन, आरशी ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघील कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक टावर, जियाउल हक टावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वद, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और लीजिए सतना एमपी से मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता रहेंगे उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के श्रोता जुड़ रही हैं कार्यक्रम से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, इन तमाम श्रोताओं के साथ ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से हमारे श्रोता रहेंगे सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और तमाम चंचोलिया परिवार के सदस्य। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ रही हैं हमारे श्रोता जो लिख रही हैं हमें अपना संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत। और श्रोता रहेंगे सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, मीनाक्षी तिवारी, माया कुमार कुमारी, जग्गी दुआ और प्रेमलता दुआ, ये तमाम श्रोता रहेंगे मॉडल टाउन करनाल से। इन तमाम श्रोताओं के साथ कृष्णा पारक दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से, पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय और लीजिए अगले श्रोता जुड़ते हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू सोना, मोना हनी, यश और इनके माताजी पिताजी। गांव में डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु छोटू और एसके पप्पी खुराना। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत के साथ रहेंगे सादिया। और लीजिए अब श्रोता जुड़ते हैं हमारे गांव ननोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से राजबाला, नवीन, मंदी, प्रियंका, सपना, नीतू, वेदांश जांगड़ा और सजन कुमार जांगड़ा जी। तो तमाम श्रोताओं के साथ आइए अब मैं आपको वो सुनवा देता हूं जिस गीत का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1988 में आई फिल्म तेजाब का सुपरहिट गीत रहेगा श्रोताओं, और गीत का संगीत, डांस, अदाकारी सब कुछ तो दर्शकों के सिर चढ़कर बोला था। श्रोताओं इस फिल्म का हर एक गीत ऐसा था जिसने सुनने वाले तमाम श्रोताओं के दिलों में

अपनी खास जगह बना दी थी। बहरहाल अब जो गीत आप सुनेंगे श्रोताओं, उसे फिल्माया गया माधुरी दीक्षित जी पर, और इस गीत ने रातों रात माधुरी दीक्षित को डांसिंग क्वीन बना दिया। सरोज खान की शानदार कोरियोग्राफी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और अलका याग्निक की आवाज ने इस गीत को इतिहास बना दिया। श्रोताओं, कहा जाता है कि इस गाने की शूटिंग के बाद माधुरी दीक्षित की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उन्हें 1-2-3 गर्ल कहकर पुकारने लगे थे, और यही गीत उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी बना। तो सुनते हैं जावेद अख्तर साहब के द्वारा लिखा गया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध किया, अलका याग्निक के स्वर में, तेजा फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
0: कैसे?

दिल संभालिएगा श्रोताओं, दिलों में डिंग डोंग हो रही होगी। जी हाँ, आप सुन रही हैं आकाशवाणी हिसार, संदेश आपके गीत हमारे।

1988 में आई श्रोताओं तेजा फिल्म का आपने गीत सुना, माधुरी दीक्षित जी पर यह गीत फिल्माया गया था। अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज थी और आप सुन रही हैं आकाशवाणी हिसार। और नई श्रोता कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारा टेलीफोन नंबर, नंबर रहेगा 9729253272। और गुजारिश श्रोताओं उन तमाम चाहने वालों से कि एक संदेश के बाद धैर्य बनाए रखें कार्यक्रम में। और लीजिए, धैर्य का फल हमेशा मीठा बताया गया है और इसी मीठे एहसास के साथ बढ़ते हैं अगले श्रोताओं की ओर। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, जिला नांदेड़ इटाला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे। ग्राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से हमारे श्रोता जुड़ते हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, वंदना मानवी, तन्वी गोहर। ऊपरकोट मोहल्ला चुखनुटी बुलंदशहर से हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत प्रवीण, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और तमाम अब्बासी परिवार के सदस्य। दुर्गा कॉलोनी जिला हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। मोहाली पंजाब से बब्बल

मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। गांव ही परसोगा तहसील लोसा जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। मारहरा दरवाजा एटा से संदेश हम तक पहुंचा है। श्रोताओं लिखते हैं, ये नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, सोहेल हसन, अनम और यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत प्रवीण, ये तमाम श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, शामिल हो रहे हैं पद्मा टोकी जिनेपा नगर मध्य प्रदेश से ये श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। और लीजिए नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर। और जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमेताहुजा कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। गांव चूली देशवाली तहसील आदमपुर जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से इनके मित्र रहेंगे रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और राम निवास पांडू जी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव पनिहार चक्के जिला हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा काना, लड्डू ममता और समस्त दहिया परिवार के सदस्य। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और समस्त डूडी परिवार के छोटे बड़े सदस्य कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता रहेंगे सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से हमारे श्रोता रहेंगे। कृष्ण की नगरी मथुरा से लीजिए सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, अल्ताफ हुजरे, शेफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख, ये तमाम श्रोता रहेंगे सांगली जिले के जत शहर से। और लीजिए श्रोताओं, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए श्रोताओं, अब मैं आपको लिए चलता हूं सात समंदर पार, यानी 90 के दशक की वो सुपरहिट फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे, जिसकी धुन सुनकर आज भी दिल झूम उठता है। श्रोताओं, गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर दौर में और भी जवान लगने लगते हैं, और ऐसा ही ये गीत है श्रोताओं। दिव्या भारती की मासूम अदाएं और साधना सरगम की खनकती आवाज ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और श्रोताओं, इस गीत की खास बात ये कि ये उस दौर में इस गीत का जो म्यूजिक था, संगीत था, वो वेस्टर्न स्टाइल की बीट्स पर आधारित था। विजू शाह साहब ने संगीत तैयार किया और इस गाने में ऐसा आधुनिक संगीत दिया जिसने 90 के दशक के बॉलीवुड में एक नया आयाम स्थापित कर दिया। तो सुनते हैं उसी गीत को जिसे लिया है हमने फिल्म विश्वात्मा से। 1992 में आई ये फिल्म, जिसका गीत अब हम सुनेंगे। सनी देओल और दिव्या भारती जैसे सितारों ने इस फिल्म में

विश्व आत्मा फिल्म का श्रोता हूँ। आपने गीत सुना, साधना सरगम की खनकती आवाज थी और आप सुन रही हैं आकाशवाणी हिसार। व्हाट्सएप के संदेशों पर आधारित श्रोताओं, कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार से प्रस्तुत हो रहा है और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और आइए श्रोताओं, अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर। संबलपुर कांकेर से हमारे श्रोता जुड़ेंगे फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना प्रवीण और अब्दुल्ला आजाद। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे बंडू लोहार, पोपलघट चंद्रकला, देवीदास। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता जुड़ेंगे हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। गंजे डुंडवारा यूपी से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही। और लीजिए सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे श्रोता रहेंगे राम कुमार रिवार्ड और श्रीमती चंद्रकला रिवार्ड जी। इन तमाम श्रोताओं के साथ पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडी, उषा बुरांडे और अनुश्री बुरांडे कार्यक्रम से जुड़ते हैं। नई बस्ती गंजे डुंडवारा यूपी से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी डेविस, विमला और सतीश अनेजा, ये तमाम श्रोता रहेंगे। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से श्रोता रहेंगे हिमलता लालगिरी गोस्वामी, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता जुड़ते हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्री, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूवल और पीबी कुलथे। हमारे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान के श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आ रहे हैं और प्रोग्राम में आपकी प्रस्तुति सुनते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। सुकून श्रोताओं हमें भी मिलता है जब आप कार्यक्रम से जुड़ते हैं और संयम का परिचय देते हैं, धैर्य का परिचय देते हैं। और इस क्रम में लीजिए भोपालगढ़ राजस्थान से बहुत देर से धैर्य का परिचय दे रहे थे धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीबी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। सब्जी मंडी बुलढाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता रहेंगे मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और भाई बलवीर सिंह। गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से हमारे श्रोता रहेंगे बादल सिंह गिल, श्रीमती कमलेश, टीनू, नीरू, प्रीति, मोनू, डॉक्टर अंकित गिल, डॉक्टर वानिका और समस्त गिल परिवार के सदस्य। गांव जाखोद राजस्थान से हमारे श्रोता रहेंगे शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। इन तमाम श्रोताओं के साथ हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोताओं को शामिल कर लेते हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता, करण शक्ति, रिया जया और दर्शन भाई कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से श्रोता रहेंगे जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। और इन तमाम श्रोताओं के साथ ग्राम कुमार हेड़ा सहारनपुर से प्रेम पूर्वक आदाब करते हैं तो आदाब तहे दिल से स्वीकार करते हैं हमारे इन चाहने वालों का सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब

हसन। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं गांव बांडा हिडी जिला हिसार से मास्टर जगदीश चंद्र जांगड़ा, कृष्ण मोटा, सतवीर हठी और मुकारब टेलर। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और ऐसा गीत जिसे आप सुनेंगे और उस नायक के बारे में सोचेंगे कि भाई फिल्मों में तो नायक हैं लेकिन गीत में, इस गीत में खलनायक की भूमिका इस अंदाज से प्रस्तुत की कि हर कोई संजय दत्त का सिग्नेचर सॉन्ग बन गया ये गीत। तो श्रोताओं गीत आप सुनेंगे, फिल्म रहेगी खलनायक और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत के बोलों को, शब्दों को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत रहेगा और आवाजें श्रोताओं आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौड़ की। तो सुनते हैं खलनायक फिल्म का ये गीत।

कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौड़ की आवाजों को श्रोताओं आप सुन रहे थे। फिल्म थी खलनायक और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं श्रोताओं। और कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के लिए हम तमाम चाहने वालों को शामिल करते हैं। कस्बा अग्रवाल मंडी टटरी बागपत यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे। आसिफ अली खान, मोमिना, नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान। रिंग में छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा हमारे श्रोता रहेंगे। वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। इन तमाम श्रोताओं के साथ जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता रहेंगे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान और इसरार के साथ रहेंगे नरगिस खातून। चक 5 MD पतरोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से श्रोता रहेंगे मंगल जनागल, राही श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए अब शामिल कर लेते हैं काबरेल गांव तहसील मंडी आदमपुर जिला हिसार के श्रोताओं को। बलवंत सिंह इंदौरा, बलवान सिंह इंदौरा, सोमवीर इंदौरा, मनीष इंदौरा, अरुण इंदौरा, अंकित इंदौरा, कुसुम इंदौरा और हिमांशी इंदौरा को नए श्रोता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बहरहाल स्वागत इन तमाम श्रोताओं का। इन्हीं श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन प्रवीण, रोजी प्रवीण, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। पटियाली रोज गंज डुंडवारे यूपी से आमिर हुसैन, बेगम तायबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और तमाम सदस्य। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव जेवरा जिला हिसार से हमारे श्रोता रहेंगे वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र भ्यान और मनोज भ्यान। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा कार्यक्रम से जुड़ते हैं और इन तमाम श्रोताओं के साथ अब जुड़ रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राहिम मेहरा, जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और लीजिए गांव में डाकघर निमनाबाद जिला जींद से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ जुड़ रहे हैं। और श्रोताओं जिला जींद के इन श्रोताओं के साथ अब शत प्रतिशत श्रोता हमारे आज के कार्यक्रम से जुड़ पाए हैं। अब कोई श्रोता शायद आज तो शिकायत भी नहीं करेगा कि हमने संदेश भेजा और हम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। बहरहाल शत प्रतिशत तमाम श्रोताओं के साथ आइए अब कार्यक्रम का एक और अंतिम गीत सुनते हैं। फिल्म रहेगी जीत सनी देओल और तब्बू जी पर इस गीत को फिल्माया गया और खूबसूरत संगीत आप सुनेंगे श्रोताओं। गीत का बोल हर एक शब्द आपके सीधे दिल में उतर जाएगा। जीत के गीतों ने भी लोगों के दिलों पर कुछ ऐसा जादू किया श्रोताओं कि सुनने वाले मदमस्त हो गए, मनमोहक हो गए इन गीतों को सुनकर। नदीम श्रवण का मधुर संगीत, समीर साहब ने इस गीत को लिखा, कविता कृष्णमूर्ति की सुरीली आवाज आप इस गीत में सुनेंगे।

वाकई दोस्तों, इस दिल का क्या करे साहिब कि समय इजाजत नहीं दे रहा आपसे और गुफ्तगू करने का, आपसे और जुड़े रहने का। बहरहाल याद रखिए श्रोताओं, जिंदगी के में रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं और आपके संदेश इन रिश्तों को मजबूती प्रदान करते हैं। अब दीजिए कार्यक्रम समेटने की अपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ को अनुमति। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय

0: सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and